जेहा जाने ते हमरते वेखो पुनर जा वस्तु अंदर बसमावे

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलोहर्ट्स से तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु न तरह आहिनि। थोरी देरि में हमेशह तव्हां भगत कलाम साहिब जन जी मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदो, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। ॼण तोखे ख़बर कहिड़ी ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहा त असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर अचो त भगत कलाम साहिब खे ॿुधूं।

तो भगत कलाम साहब जन जी मिठड़े आवास में कलाम उधी रहा आकाशवाणी जी सिंधी सर साईं पेश आहे तफ़सरो ऑस्ट्रेलिया जे प्रधानमंत्री श्री एंथोनी एल्बनिस एमपी जे निंड ते भारत जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जी यात्रा 8-10 जुलाई 2026 दरमियान करे रहिया आहिनि। हीअ संदसि मेलबर्न में टी ऑस्ट्रेलिया भारत सालियानी समिट में हिसो वठण लाइ संदसि यात्रा थी रही आहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई 2026 ते समिट में हिसो वरितो। गवर्नमेंट हाउस में संदसि पहुचण शर्त भारतीय प्रधानमंत्री जी पुरजोश ऑस्ट्रेलिया जे प्रधानमंत्री एल्बनिस आजियां कई। मुल्कनि मंझ लंबे अरसे खां हलंदड़ रिश्तनि खे यादि कराईंदे जेके जिन जी पाड़ इतिहासिक लाॻापनि में आहे। माण्हुनि जा माण्हुनि सां ॻाल्हापा ऐं ॿई मुल्क पाण में हिकमत अमली फ़ाइदा ऐं बाहमी इज़त हिक ॿिए लाइ वंडनि था। ॿिन्ही अॻवाननि पंहिंजे गॾियल वचन बाबति तव्हांखे ॿीहर दोहिरायो त भारत ऑस्ट्रेलिया वसी हिकमत अमली भाईवारी खे अञा वधीक पुख़्तो कयो वेंदो त जीअं इहा उभरंदड़ आलमी माहौल में उभरंदड़ ललकारनि जो मुक़ाबलो करे सघे ऐं तावन जे नवनि खेत्रनि खे ॻोल्हियो वेंदो त जीअं इलाइक़े में अमन खुशहाली ऐं दायमत रही सघे। प्रधानमंत्री सालियाने बचा वज़रनि जी ॻाल्हि ॿोल्हि जी डायलॉग जी आजियां कई जंहिं सां सलाह मसलत ऐं सहकार वधंदो। बचा मश्कनि ऐं मटसटाउनि जे वधंदड़ फ्रीक्वेंसी ते ॿिन्ही अॻवाननि दिलजाए ज़ाहिर कई। हुननि ख़ुशी ज़ाहिर कई त बचा भाईवारी हाणे सभिनी खेत्रनि में वधी रही आहे। फ़ौजी तइलीम जे प्रोफेशनल जी अहमियत खे मञींदे तंहिंखां अलावा गॾियल खोजना कौत खे अॾण ऐं इन खां अलावा मुश्किल जे लाइ फ़ौज खे तयारु रखणु ॿिन्ही प्रधानमंत्रियुनि हलंदड़ कोशिशुनि खे रोशनी में आंदो त कीअं इन्हनि खे पुख़्तो कयो पियो वञे। ॿिन्ही अॻवाननि ॿिन्ही मुल्कनि मंझि फ़ौजी तइलीम इदारनि जे ॻाल्हापे खे वधीक पुख़्तो करण ते ज़ोर ॾिनो। प्रधानमंत्रियुनि ज़ोर ॾिनो त तवानी सुरक्षा घणी अहमियत रखे थी। हुन पंहिंजे वचन बता खे ॿीहर दोहिरायो त हिक भरोसेमंद पहुच ऐंदड़ ऐं बरक़रार रहंदड़ तवानाई सप्लाई खे तवानाई सप्लाई सहकार ॾिनो वेंदो। तंहिं में वरी खां ख़तम ईंदड़ तवानाई जो घणो रोल आहे। प्रधानमंत्रियुनि ध्यानु छिकारायो त माली भाईवारी तंहिंखे वधायो वेंदो ऐं पंहिंजे वचनबद्धता खे दोहिरायो त जल्द ई हिकु अभिलाषाई तवाज़नी ऐं बाहिमी फ़ाइदेमंद वसीअ माली सहकार करार खे अमल में आंदो वेंदो। हुननि ऑस्ट्रेलिया भारत सीओ फोरम जे नतीजे जी आजियां कई ऐं इकनॉमिक बिज़नेस रोड मैप जी जेका तंहिं में बहस वहस थियो तंहिंजी पिण आजियां कई जेको ॾींहं जे शुरू में थियो। हुन ॿिन्ही मुल्कनि जे वापारनि खे हिमथायो त अवलियत वारे खेत्रनि में सीड़प जे नवनि वजहनि खे ॻोल्हनि। हुन पर रोशनी में आंदो त ॿिन्ही मुल्कनि में तइलीम में सहकार जा घणा वजह आहिनि। हुन दिलजाए ज़ाहिर कई त भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जी हाज़िरी वधी रही आहे ऐं तइलीम में संदन योगदान पिण वधी रहियो आहे जंहिंसां ईंदड़ वक़्त लाइ असांखे हिकु वर्क फोर्स तयारु मिलंदी तंहिंसां इनोवेशन खे हथी मिलंदी ऐं माण्हुनि जा माण्हुनि सां ॻाल्हाप वधीक पुख़्ता थींदा। ऑस्ट्रेलिया में रहंदड़ भारतीय क़ौम ते अॻवाननि दिलजाए ज़ाहिर कई संदन शुक्राना अदा कया जो संदन ऑस्ट्रेलिया जे समाज में घणो योगदान आहे ऐं ॿिन्ही मुल्कनि मंझि हू हिकु ज़िंदा पुल जो रोल अदा करे रहिया आहिनि। हुननि इहो पिण ध्यानु ॾियारियो त वधंदड़ सकाफ़ती मटासटनि सां भाई सूझबूझ वधी रही आहे। तमिलनाडु जे जेके असली आर्ट फैक्ट्स आहिनि जीअं की हिकिड़ो पथर जो आहे पवित्र नंदी मेटल जो ट्राइडेंट तंहिं में भद्राकाली जी तस्वीर आहे ऐं हिकु छहनि मथनि वारो कार्तिक जी मूर्ति जेका पथर में ठहियल आहे ऑस्ट्रेलिया तिन खे वापसि मुक़ररु वक़्त जे अंदरि भारत खे सौंपींदो। यात्रा दौरान ॿिन्ही धुरनि घणनि ई
सूझबूझ जे चिठनि ते करारनि ते सही कयूं से अची था वञनि सामूंडी सुरक्षा शहरी न्यूक्लियर एनर्जी स्किल डेवलपमेंट उभरंदड़ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन खां अलावा फिल्म मेकिंग इन खां अलावा बचाव ऐं सुरक्षा एनर्जी सुरक्षा तैलीम सोलार एनर्जी रवायती नॉलेज ऐं तैलीम ते पिण बाहिमी डॉक्यूमेंट सही कया विया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एलमिन्स जा शुक्राना अदा कया जो संदसि सुठी आजा कई वई ऐं संदसि मेड़ जी पिण तव्हां तफ़सीर ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी।

साईं तोखे ख़बर कहिड़ी साईं प्रोग्राम खणी करे अवांजी क़िस्मत में हिकु दफ़ो ॿीहर खां हाज़िर थियां साईं में जेका महांगाई तंहिं सां वाबस्त सां एडिटोरियल शायदि आहे जंहिंजो टाइटल आहे महांगाई जे पार हेठि दॿियल अवाम सो शायदि आहे सिंध एक्सप्रेस में लिखियलु आहे ओलह शहर में जेका जंग हली सां ख़तम बि थी वई मुल्कनि जो पाण में करार बि थी वियो पर पेट्रोल जा अघ आलमी मार्केट में लही विया पर पाकिस्तान में अञा ताईं पेट्रोल जा अघ पुराणे अघ ते हली रहिया आहिनि इन खां सवाइ जंग दौरान जेका महांगाई जी लहर पाकिस्तान अंदर आई सां बि जीअं जो तीअं बरक़रार आहे तंहिं मां पतो थो पए की हुकमराननि खे अवाम सां को बि लेन देन कान आहे त अवाम केतिरी परेशान आहे बुनियादी ज़रूरतुनि खां कीअं महरूम रही रही आहे ऐं हुकूमत पेट्रोल जा अघ घटाइण लाइ तयारु कान्हे वॾे ॿिए पासे वापारी शयुनि जा अघ मुनासिब करण खां नाबरी वारे वेठा आहिनि ओलेश जंग जो त लॻभॻि सॼे आलम ते असरु पियो पर ईअं थो लॻे ॼण पाकिस्तान घणे नमूने असर मुतासिर थियो आहे हुकूमत पेट्रोल जा अघनि खे आसमान ते पहुचाए रखियो ऐं इहो पियो तासिर ॾिनो त ॼण जंग पाकिस्तान विड़ी रहियो आहे जेको ईरान मुल्क आहे जेको हेतिरो हलाक थियो तंहिं पंहिंजे अवाम खे वधि

मध्य रिलीफ डिनो अज भी उत्ते पेट्रोल पुराने अघ से मिली रहा पर पाकिस्तान में सूरत हाल इन बिल्कुल उबतर है। पाकिस्तान इंदड़ तेल के बेड़न के कड़े रोको को पो छो जो पाकिस्तान इन डस में पैं रोल पे अदा कराए पर इतने पेट्रोल के तेल के एतो बधाया वो है जो इन वक्त हुकूमत ला एक वेले की मानी खाण भी हलाक थी पो है। तासन एक्सप्रेस में शायद एडिटोरियल बुधल जिनो टाइटल हो महंगाई के बार हेठ दबियल अवाम।

ಕಣಕ ಸಭಾಭಸ್ತ ಬೀಜಕ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಶಾಯತೆ ಸೋಪನ ಹಲಾಕಂದ್ರ ಟೈಟಲ್ ಹೈ ಕಣಕ ಜಿ ಖೋಟ ಜೋ ಖದಶ ಸೋಪನ ಸಿಂಧ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇ ಶಾಯತ ರಾಯ ಮಹಿಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉನ್ನ ಮುಲ್ಕನ್ ಮೈ ಜಿತ ಚಾಹಿಂದ ಕಿ ಜರಾಯ ತ ಮುಲ್ಕ ಜಿ ಮೈಶತ್ ಜಿ ಕರಂಗ ಜಿ ಹಡಿ ಜಿ ಪರ ಇತೆ ಹರ ಸಾಲ ಕಣಕ ಜೋ ಬಹರಾನ ಪೈದಾ ಥಿಂದೋ ಹೈ ಹರ ಸಾಲ ಅವಾಮ ಕೆ ಮಹಂಗಿ ಅಗರ ಅಟೋ ವಠಣ ಪವಂದೋ ಹೈ ಸಿಂಧ ಮಹಿನ ವಕ್ತ ಅಟೋ 150 ರೂಪಾಯಿ ಫಿ ಕಿಲೋ ಮಿಲಿ ರಹ ಹೈ ಜಡೆ ತ ಸುಬೆ ಮೇ ಮೌಜೂದ ಕಣಕ ಸಖೀರೋ ಕಂದರ कणक के पैं गोड़े हेठ रखे वेठा नतीजन कणक गोदाम में पई है ए माफियां इंतजार में कणक के मार्केट में खोट थी महसूस थे तो बाहर कड़ी कर महंगे कदे विकी वे आवाम ते माशी बार वेझी कर संगन कमर चिबी कई वे ताजा पण कणक गोदाम में पई है पर हुकूमत इंतजाम में आवाम के सस्तो अटो न पई मैसर कराए यो पण अंदेशो जाहिर किया है इंदड़ साल बढ़ाई एक मैट्रिक टन कणक की खोट थी जैसे हुकूमत सख्त निगरानी करने जो फैसलो किया है सूबे में 4.8 मिलियन मैट्रिक टन कणक पैदावार थी है जैसे सालानी जरूरत 6.53 मैट्रिक टन है हुकूमत जो फरमान तो बुधने में सुठो तो लगे पर अमल में इंदो या नहीं इंदो इन अंदेश है ताजुब की गाल जो हर साल कणक गुम थी थे हर साल मानू अटे परेशान है सिंध सूबे में सुठे मिकदार में कणक लाने का बहर कणक के घुराए कर तो पे छा हुकूमत इंतजाम के खबर को कड़ा अनासर जी कणक जखीरो कर मुनाफो था कमायन ए आवाम के बिन मेलन की मानी खाने का महरूम था रखन तो सिंध एक्सप्रेस में शायद थे एडिटोरियल बुधी रहा जो टाइटल हो कणक के खोट जो खदशो।

प्रोग्राम प्रोग्राम्स तो के खबर कड़ी या आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई और पेशन खास खास खबरों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चो भारत आलम जी टियों नंबर वडे में वडी एकता सादर थियण तो चाहे जो संदस मकसद है मोटो है ग्रो मोर अचीव मोर उन्हें गाल मेलबर्न में भारतीय कौम के खिताब कंदे चाहिए।

खुलल है इंडो पैसिफिक आजाद इंडो पैसिफिक में बचाव ए सुरक्षा सहकार के एक गडियल ऐलान से भारत ए ऑस्ट्रेलिया सही कई है। इन अलावा ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम की सप्लाई से पिण एक करार सही किया वो है। ईरान के सुप्रीम अगवान अयतोल्ला अली खमेनी के मुशाद में सुप्रद खाक किया वो हजारे संदस हिमायती खेस पैं श्रद्धांजलि पौता हुआ। भारत सख्त लफ्जन में मत जमायत में तकरार से वाबस्ता सेक्सुअल वायलेंस की निंदा कई है। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस मोरक्को के ब बुड़ी तां मात दई करे सेमीफाइनल्स में दाखिल थियो है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुध रहा है हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रहा है वरी अव मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े चैं तेसी तीन दींदा मोकल सदाई गढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य सहित सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Sunil Verma. India and Australia have adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a short-term, long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: As Prime Minister Narendra Modi's highly successful state visit to Australia draws to a close, today's engagements mark the final leg of his Melbourne itinerary before he departs for the next destination on his three-nation tour. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit reports that Mr. Modi met the leader of the opposition, Angus Taylor, and discussed bilateral ties and political cooperation. Prime Minister Modi will arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand on the third and last leg of his three-nation tour. Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of the trade and commerce and defense. The visit to New Zealand will be the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, the Prime Minister will address a large gathering.

में आप संगीतिका कार्यक्रम में कमलकांत चौहान के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। उदासियों को अलविदा कहिए, एक नई सुबह का आगाज कीजिए। उदासियों को अलविदा कहिए, एक नई सुबह का आगाज कीजिए। सूरज के इन पहली किरणों के साथ अपने हौसलों को नई उड़ान दीजिए। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, सुबह का ये वक्त कितना खूबसूरत और सुहावना है ना, जब पूरी कायनात एक नई उम्मीद के साथ जागती है। परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवा के झोंके, बारिश की फुहार और साथ में चाय की प्याली से उठता हुआ धुआं, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमसे कह रही हो, उठो, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है, ये वक्त तुम्हारा है।

आने वाले बिना एतबार कर, आने वाले

दोस्तों सुबह का समय कितना बिजी होता है ना, इधर से ऑफिस, उधर से बच्चों के स्कूल जाने का समय, उनका लंच पैक करना, फिर उनको बस स्टॉप पर छोड़ कर आना, लेडीज की कितनी टफ जॉब है। एक कहावत है कि बच्चे मिट्टी के उस ठेले की तरह होते हैं, जिन्हें जैसा रूप दिया जाए वे वैसे ही ढल जाते हैं। लेकिन इस कच्ची मिट्टी को मुकम्मल और खूबसूरत आकार देने का हुनर किसके पास है? यकीनन एक महिला के पास, एक माँ के पास। इसी पर निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है, बेसन की सौंधी रोटी पर आंचल की छांव, बेसन की सौंधी रोटी पर आंचल की छांव और मिर्च हरी, माँ की गोद में सिमट गई बच्चों की सारी दुनिया ही।

बिल्कुल दोस्तों, सबका ख्याल रखते रखते मम्मी यानी औरत अपना ख्याल रखना भूल ही जाती है। उसका मन कितना अजीब है ना, वो पूरे घर को तो गुड मॉर्निंग कह देती है लेकिन खुद से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहना भूल जाती है। कहते हैं कि औरत से ही घर में रौनक होती है, लेकिन इस रौनक को बनाए रखने के लिए आपका स्वयं अंदर से मुस्कुराना भी तो जरूरी है। जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच में स्वयं को भूल जाना भी कोई अच्छी बात तो नहीं। अपने आप से भी प्यार करना सीखिए।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

आएगी एक दिन ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: हमारी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने सभी फ्रेंड्स से यही कहना चाहूंगी कि अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, जिसमें आप एक कप चाय की प्याली सुकून के साथ पीजिए और साथ ही खुद को शाबाश भी दीजिए, क्योंकि आप सारा दिन घर परिवार बच्चे सभी को संभालती हैं।
1: ओके शिवा।

दोस्तों मौसम भी सुहाना है और साथ में चाय और मौसम का आनंद भी लीजिए हंसते मुस्कुराते हुए। और हमें लिखिएगा जरूर कि हम आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। और इसी के साथ अपनी दोस्त अर्चना सचदेवा को गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: रही बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्योदय योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा।

0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत के 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट। यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी का परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है

0: जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय बनने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद

0: नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमरीका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: With that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France storm into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in fourth T20 international to take 3-0 lead in five-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, the end of morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बिनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरक ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावर से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरक अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बैरुल्काहिर महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हमख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरक उमंगों की अक्कासी होती है।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मायदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी।
4: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
2: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
3: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है।

उनके आवाज के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुफ्त महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसान सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:43 और 16 सेकंड हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सईद अहमद खान का सितार वादन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की है विनोद पाठक ने।

राष्ट्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सईद अहमद खान का सितार वादन सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की थी विनोद पाठक ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: जीवन चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी के व्यक्तित्व पर विश्व प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों का प्रभाव। आलेख एवं स्वर अपराजिता श्रीवास्तव।
1: मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने के पीछे दुनिया के महान विचारकों और लेखकों के दर्शन का एक गहरा समुद्र छिपा था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, विश्व के इस महान वैज्ञानिक ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सादगी की अत्यधिक प्रशंसा की। भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में पीड़ित समुदायों की आवाज उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। साथ ही महात्मा गांधी को विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मैंडेला ने प्रेरित किया। गांधी जी कोई जड़ विचारक नहीं थे, वे एक खुले दिमाग वाले खोजी थे। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं अपने घर के चारों ओर दीवारें नहीं चाहता और ना ही अपनी खिड़कियों को बंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से बहे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं था बल्कि यह दुनिया भर के महान विचारकों और लेखकों के दर्शन का एक अनूठा संगम था। गांधी जी ने स्वयं स्वीकारा था कि उनके विचारों को गढ़ने में पश्चिम और पूर्व के लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए जानते हैं उन वैश्विक महापुरुषों के बारे में जिन्होंने गांधी जी के विचारों को एक आकार दिया। उनमें पहला नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय का। लियो टॉल्स्टॉय का गांधी जी पर सबसे गहरा प्रभाव था, शायद इसलिए गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जिसका हिंदी में अर्थ है ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इस पुस्तक ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। टॉल्स्टॉय से अहिंसा और प्रेम का सार्वभौमिक सिद्धांत आया। इस पुस्तक ने गांधी जी के मन से हिंसा के प्रति संशय को मिटा दिया और उन्हें अहिंसा के सिद्धांत पर अटूट विश्वास दिलाया। टॉल्स्टॉय के प्रेम के सिद्धांत और शारीरिक श्रम की अवधारणा ने गांधी जी के आश्रम जीवन की नींव रखी। और ऐसे ही जॉन रस्किन की एक छोटी सी किताब अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। गांधी जी ने इस पुस्तक को अपनी यात्रा के दौरान पढ़ा और इसी से सर्वोदय यानी सभी के उदय का सिद्धांत निकाला। रस्किन से शारीरिक श्रम का सम्मान और सर्वोदय का पाठ सीखा। उन्होंने इस पुस्तक से सीखा कि एक वकील के काम की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक बाल काटने वाले की। गांधी जी को ये समझ आ गया था कि व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में ही निहित है और इस प्रेरणा के पीछे थे हेनरी डेविड थोरो। थोरो एक अमेरिकी निबंधकार थे। थोरो ने गांधी जी को वह हथियार दिया जिसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया। थोरो से उन्होंने सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपनाई। उनके

0: संबंध सिविल डिसोबीडियंस से गांधी जी को करबंदी और अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ने की प्रेरणा मिली। थोरो के सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन ने भी गांधी जी को काफी प्रेरित किया। कई विदेशी लेखकों से प्रभावित होने के बावजूद गांधी जी को उनके आध्यात्मिक संकटों में मार्गदर्शन करने वाले कोई विदेशी नहीं बल्कि जैन दर्शनीय श्रीमद् राजचंद्र थे। राजचंद्र जी ने गांधी जी को भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मसंयम की गहराई से परिचित कराया। शायद इसलिए गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। गांधी जी का व्यक्तित्व सिर्फ लेखकों तक सीमित नहीं था, उन्होंने विभिन्न धर्मों के सार को भी अपनाया, जिनमें पहला नाम है भगवद गीता। इसे वह अपना आध्यात्मिक शब्दकोश स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहते थे। निष्काम कर्म का पाठ उन्होंने यहीं से सीखा। इनमें दूसरा नाम शामिल है बाइबल का। ईसा मसीह के पर्वतीय उपदेशों ने उनके अहिंसा और बुराई का जवाब भलाई से देने के विचार को पुख्ता किया। गांधी जी का अपना साहित्य इतना प्रभावी और प्रेरणादायक था कि दुनिया के कई जाने माने लेखकों ने उनके विचारों को अपनी रचनाओं में जगह दी। राजा राव, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार राजा राव की प्रसिद्ध कृति कंथापुरा गांधीवादी दर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित थी। मुल्क राज आनंद अपनी यथार्थवादी रचनाओं के लिए जाने जाने वाले लेखक मुल्क राज आनंद के उपन्यासों में गांधी जी की अहिंसा और सामाजिक न्याय की विचारधारा का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी जी ने इन सभी विचारों को केवल पढ़ा नहीं बल्कि अपने जीवन की प्रयोगशाला में भी इनका प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एक ऐसी विचारधारा है जिसने समय और भौगोलिक सीमाओं को पार करके वैश्विक समाज को शांति और मानवता का रास्ता दिखाया। उनकी सादगी और विचारों की मजबूती आज भी दुनिया भर के लेखकों और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। गांधी जी ने इन विदेशी और भारतीय विचारों को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन की प्रयोगशाला में भी आजमाया। उन्होंने टॉल्स्टॉय से प्रेम लिया, रस्किन से सम्मान्यता ली, थोरो से विद्रोह की कला सीखी और गीता से कर्तव्य का मार्ग चुना।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी के व्यक्तित्व पर विश्व प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों का प्रभाव। आलेख एवं स्वर अपराजिता श्रीवास्तव।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंद प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

वीडियो न्यूज 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही।

हम समाप्त फरमाए। मतलात करता हूँ कि बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसने जात की, बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसने जात की, मेरी नजर की राह में गर्द है मुमकिनात की। बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी हुसने जात

की, मेरी नजर की राह में गर्द है मुमकिनात की। शरदे के आखिरे कार जज्बे दिल अर्शे बरी तक आ गया, आखिरे कार जज्बे दिल अर्शे बरी तक आ गया, जैसे थी आखिरी हदें कुबे तजल्लियात की। आखिरे कार जज्बे दिल अर्शे बरी तक आ गया, जैसे थी आखिरी हदें कुर्बे तजल्लियात की। शरत खत्म के अकलो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, अकलो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, हरफो सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। अकलो दिलो निगाह सब उसके हुजूर बाअदब, हरफो सदा भी गुम तमाम फिर भी किसी ने बात की। शेर समाप्त करें कि धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरव कायनात की। फिर समाप्त कीजिए शेर के धरती पे फूल आसमां तारों से जगमगा उठा, ये तो अदाएं हैं मेरे खुसरव कायनात की। अर्ज करता हूं कि तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीनाए कायनात की। फिर समाप्त कीजिए शेर के तुमसे तमाम नगमगी तुमसे तमाम दिलकशी, तुमसे तमाम धड़कने सीनाए कायनात की। शेर क्या है कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नजर उठी बज़्म सजी हयात की। पेशेर अर्ज करता हूँ कि हुस्न बिखर बिखर गया राह समर समर गई, जब भी तेरी नजर उठी बज़्म सजी हयात की। आखिरी शेर हमदे पाक का है कि चाहे नजर न आ सके चाहे खबर न हो सके, चाहे नजर न आ सके चाहे खबर न हो सके, और भी वजह है कोई गर्दिश कायनात की। चाहे नजर न आ सके चाहे खबर न हो सके, और भी है वजह कोई गर्दिश कायनात की। बिखरी हुई है हर तरफ रोशनी उसने जात की, मेरी नजर की राह में गर्द है मुमकिनात की। सामईन इकराम, नाते पाक से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दरूद पाक पढ़ें। अर्ज करता हूँ कि जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शह ताजे सुल्तानी में है। फिर समाप्त कीजिए कि जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शह ताजे सुल्तानी में है। उसे मतलब समाप्त करें कि कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, दो जहां की कामयाबी तेरी दरबानी में है। कैसरी में है नामुमकिन शान कैवानी में है, दो जहां की कामयाबी तेरी दरबानी में है। एक पत्र और समाप्त करें हजरात के, अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हर्फ कुरानी में है, अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हर्फ कुरानी में है, सरनगुं थी कल भी दुनिया अब भी हैरानी में है। फिर समाप्त करें कि अल्लाह अल्लाह कैसी अजमत हर्फ कुरानी में है, सरनगुं थी कल भी दुनिया अब भी हैरानी में है। और लात उज्जा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, शेर देखें हजरात के, लात उज्जा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, तेरी तकबीरें मुसलसल बज़्म इमकानी में है। लात उज्जा के सनम खाने उजड़ कर रह गए, तेरी तकबीरें मुसलसल बज़्म इमकानी में है। और खुश नसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, शेर समाप्त फरमाएं कि खुश नसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, जिनकी आंखों के लिए जलवा फरावानी में है। खुश नसीबी में तेरे अहबाब का सानी नहीं, जिनकी आंखों के लिए जलवा फरावानी में है। और आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, शेर समाप्त करें कि आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, अजमत आदम।

0: शरद की पाक दामानी में है। आदमियत पर तेरी हिकमत से ये रोशन हुआ, अजमत आदम शरद की पाक दामानी में है। और जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, शेतमा फरमाया हजरात कि जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, वो अदाए फखरा का तेरी सुल्तानी में है। जिसने शाहों को गदाओं से किया शीरो शकर, वो अदाए फखरा का तेरी सुल्तानी में है। और शेर देखें कि असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, मंजिले गुम कारवाने फिक्र हैरानी में है। असरे हाजिर से तेरा नक्शे कदम क्या छूट गया, मंजिले गुम कारवाने फिक्र हैरानी में है। और मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, दिल अगरचे मुबतला जज्बों की नादानी में है। मेरे आका तेरी चश्मे लुत्फ का तालिब हूँ मैं, दिल अगरचे मुबतला जज्बों की नादानी में है। जलवा फरमा नूर हक जो तेरी पेशानी में है, इससे बढ़कर कौन सी शह ताज सुल्तानी में है। वक्त समाप्त फरमाया हजरात के याद करके जो उसे आंखों से बहता है जमील, याद करके जो उसे आंखों से बहता है जमील, कैसी तासीरे शिफा उस आंख के पानी में है। याद करके जो उसे आंखों से बहता है जमील, कैसी तासीरे शिफा उस आंख के पानी में है। जलवा फरमान नूर हक जो तेरी पेशानी में है, उससे बढ़कर कौन सी शह ताजे सुल्तानी में है। हजरत एक नाते पाक और समाज समय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलाज करता हूँ कि अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, तेरी सुन्नत से है, कुरान से है, इस्लाम से है। अपनी दुनिया का हर एक रंग तेरे नाम से है, तेरी सुन्नत से है, कुरान से है, इस्लाम से है। और एक मतलब समाप्त करें कि रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, आज सीनों में उजाला तेरे पैगाम से है। फिर समाप्त करें हजरात के रात का खौफ ना अंदेशा कोई शाम से है, आज सीनों में उजाला तेरे पैगाम से है। और इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको, समाज फरमाए के इस खराबे में भटकने नहीं देती मुझको, नूर अफशानी मुसलसल जो दरो बाम से है।
1: दूसरी बात मिलाए फरमाइए, अगर तिल कशिश है ख्याल मोहम्मद, अगर तिल कशिश है ख्याल मोहम्मद, नजर आ रहा है जमाल मोहम्मद, नजर आ रहा है जमाल मोहम्मद, अगर तिल कशिश है ख्याल मोहम्मद, नजर आ रहा है जमाल मोहम्मद, नहीं दे जहां में मिसाल मोहम्मद, नहीं दे जहां में मिसाल मोहम्मद, खुदा से हुआ है मिसाल मोहम्मद, खुदा से हुआ है मिसाल मोहम्मद, नहीं दे जहां में मिसाल मोहम्मद, खुदा से हुआ है मिसाल मोहम्मद। हुसैन हसन की गुलामी मुबारक, हुसैन हसन की गुलामी मुबारक, यही दोनों कहलाए आले मोहम्मद, यही दोनों कहलाए आले मोहम्मद, हुसैन हसन की गुलामी मुबारक, यही दोनों कहलाए आले मोहम्मद। मदीने की गलियां हैं गुलजार जन्नत, मदीने की गलियां हैं गुलजार जन्नत, यही है कमाल मोहम्मद, यही है कमाल मोहम्मद, मदीने की गलियां हैं गुलजार जन्नत, यही है कमाल मोहम्मद। शफाअत को काफी है इतना सहारा, शफाअत को काफी है इतना सहारा, कहीं देख लें हुस्न ख्याल मोहम्मद, कहीं देख लें हुस्न ख्याल मोहम्मद, शफाअत को काफी है इतना सहारा,
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सबका ही तहत नाते रसूले पाक।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल वाहिद से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खित्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में उनकी मौत हो गई थी। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हमनसब एंथनी अल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तआवुन से मुतालिक खाका शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरक अखबारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहुल काहिल महज दो समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरक उमंगों की अक्कासी होती है। बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस वाहिदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी। बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईस्तों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और इसके मुअस्सर होने का मुजाहरा हुआ। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इससे मुश्तरक अखबार आवाम से आवाम के मजबूत राबितों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसअत का अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में अपोजिशन के लीडर गोस्टेरर से मुलाकात की। हमारे नामा निगार ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज के हमरा आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है। न्यूजीलैंड मतरेकी मना रहा है, जो उम्मीद यादों और नई शुरुआत की अलामत का माहौरी नया साल है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी 2 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं, जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से

की अहमियत और बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं, जहां मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़िश्ता दो साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे, जिससे अवाम से अवाम के मजबूत रबतों की अक्कासी होती है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक करार दिया है और कहा है कि न्यूजीलैंड की इक्तिसादी खुशहाली के लिए भारत काफी अहमियत रखता है। न्यूजीलैंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद से कबल ऑकलैंड में बड़ा जोशो खरोश देखा जा रहा है। तकरीबन 40 साल कबल किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। इस तनाजर में भारतीय बिरादरी और न्यूजीलैंड के लोग इस तारीखी मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एक महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खिता और मुस्तैद माशरा मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। नई दिल्ली में सरहदी अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह बात कही। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए एक मुतहर्रिक तरीकेकार कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने सरहद पर बुनियादी ढांचे में साइंसी तौर पर 400% का इजाफा किया है। दरख्शां गांव प्रोग्राम का हवाला देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस पहल के तहत माइग्रेशन को रोकने, रोजगार के मौके पैदा करने और हुकूमत की फलाही स्कीमों के 100% निफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कई जिलों के लिए शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के तनाजर में कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनेई की तस्वीर हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनेई इस साल 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया खित्ते में बड़े पैमाने पर महाजराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे खामनेई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबरे आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे T20 बैनुल अख्वामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एट में इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-दाखला अमित

0: ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खित्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनेई को मुशद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में उनकी मौत हो गई थी। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अख़वाल ज़र्री का प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा।
2: इंसान की गलत फहमी और बेअकली ये है कि वो खुद अपने मुतालिक तमाम गलतियों और कोताहियों से पाक साफ होने का तसव्वुर कायम कर लेता है। वो ये समझता है कि दुनिया के तमाम इंसान गलत हो सकते हैं, तमाम इंसान ऐबदार हो सकते हैं, लेकिन वो खुद किसी ऐब और बुराई का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये इंसान की एक फितरी कमजोरी है। उसे सारी दुनिया के अयूब नजर आते हैं, लेकिन उसकी निगाह उसकी खुद की गलतियों और कोताहियों तक नहीं पहुंचती। वो इस कदर खुद परस्त वाकई हुआ है कि उसे खुद के ऐबदार होने और बिगड़ने का एहसास तक नहीं होता। वो हमा वक्त दूसरों के अयूब और बुराइयां तलाशने में मसरूफ रहता है। हालांकि इंसान अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अपनी खुद की बुराइयों, कमियों और कोताहियों पर नजर दौड़ाए तो उसे पता चलेगा कि उसमें कितनी कोताहियां और नकाइस हैं और वो किस दर्जे का इंसान है, माशरे और समाज में उसका क्या मकाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अखलाक और आदात, चाल चलन, गुफ्तगू और तौर तरीकों का दूसरों की जिंदगी पर मनफी असर पड़ता हो। मकसद खुद को कमतर समझना या खुद को किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार कर लेना नहीं है, बल्कि असल मकसद अपने नफ्स का मुहासबा करना और अपनी खुद की कमियों को तलाश करके उनको दूर करना है। यही वो अमल है जो इंसान को कामयाबी की राह पर गामजन करता है। इंसान अपनी जिंदगी में कुछ काम ना चाहते हुए भी फितरतन करता है, जिनको करने के लिए उसे मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ती और न ही इन कामों को छोड़ा या बदला जा सकता है। और ये काम इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी भी होते हैं, मसलन सांस लेना, पलक झपकाना और छींकना वगैरह। कुछ काम इंसान फितरतन तो नहीं करता, लेकिन इन कामों को करते करते इंसान को उनकी आदत पड़ जाती है, गोया वो इंसान की फितरत में शामिल हो जाते हैं। और इन कामों को करने और इनकी आदत डालने के लिए इंसान को मेहनत और मशक्कत भी करनी पड़ती है। नीज इन इंसानी आदतों में से कुछ मुफीद और जरूरी भी होती हैं, मसलन वर्जिश करना, सुबह के वक्त सैर और तफरीह करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, अपनी आदत और अखलाक को बेहतर बनाना, हर किसी से खंदा पेशानी से मिलना, लहजे में नरमी पैदा करना वगैरह। कुछ आदतें इंसान के लिए मुजिर और गैर जरूरी भी होती हैं, मसलन बात बात पे गाली देना, नामुनासिब कलिमात का इस्तेमाल करना, सुस्त काहिल लाउबाली और गैर जिम्मेदार बनना वगैरह। आदतें अगर मुस्बत हैं तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आदतें अगर मनफी हैं तो उनको बदलने की हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। और इसका तरीका यह है कि इंसान दूसरों की जिन आदतों को ऐब और बुराई समझता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान खुद उन अयूब और बुराइयों का शिकार हो। वो खुद अपना मुहासबा करने के बजाय दूसरों की ऐब जोई में मसरूफ हो। इंसान खुद परस्ती और अना में मुबतला होकर खुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझने लगता है।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक और भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल PHDCII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: टुडे द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन जनरेटिंग नॉलेज, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। That's what the GCCs are. It's not as if it's a slightly upgraded version of your backroom, back off or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या है और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, और जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं, जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है। एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में

0: भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूँ आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूँ एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है, जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में। क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है। तो जिससे ही भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए। और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तवतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world, and the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world. Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers. On the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर गीता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है ये कि ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ डीपीओ जॉब्स, हमें डीपीओ जॉब के लिए नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेगी। पड़ेंगी और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है, आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखें जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोग्रेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रांग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्रीडिश पर आप उर्दू सर्विस सुन सकते हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

यह है महेंद्र कपूर, बलबीर और साथी फिल्म है आदमी और इंसान।

0: जान में हो चर्चा हमारा,
1: दिल करता मेरा दिल करता।

तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा, कैसा कहते

आना ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है।

परिवार कदम तो बढ़ा, झुका दूं न मैं सर तो

मैं तेरी लाख बचाई।

जब मेरी तस्वीर।

मेरे हम सफर फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

अभी से धड़के हैं, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा, हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये नगमा भी अपने हमराज फिल्म से सुना। इससे पहले आपने सुना शमशाद बेगम और आशा भोसले को फिल्म का नाम किस्मत। मेरी पसंद प्रोग्राम

0: है तो सारा जंगल खिल उठा है, खुशी से सारा माहौल लहर गया है।
1: लेकिन इस जंगल में इस बेचारे की कुछ भी कौन सुनता है, इसके रंग को कौन पहचानता है?
0: सुनता कोई नहीं, इसलिए मसला भी नहीं पाएगा।
1: हाँ, इसी कहीं पर धूप में मुरझा जाएगा।

0: है क्या? इस फूल को भी पत्ती पत्ती कर दे।
1: और क्या, एक फूल की कई पत्तियां, कई दीवारें।
0: हंसने क्या बात है, देखो आप नहीं खेल नहीं।
1: लेकिन तुम तो हम बात को खेल समझते हो।
0: कैसे?
1: सबसे बताओ, तुम इससे मोहब्बत कर रहे हो कि खेल खेल रहे?
0: खेल नहीं, कभी खेलता था लेकिन अब
1: अच्छे हो गए।
0: खुद खुद
1: बताए तो कौन सा

0: फास्ट बर्नर तो है ही, लेकिन 8 रुपया के साथ मिलकर उन्होंने सेंचुरी भी बनाई। मेरा तो मन इतने को जीता
1: है मछली को।
0: हाय समूह, तेरे ये खुद कुपोषी का आनंद कई कोई लोग गुण न खिला दे। अरे कोई ऐसी भी जो दीवानी और नहीं तो लाल रखी मेरे की हाथी मिट्टी को काटे बना दियो। कॉम और मिल को ऐसे भी लोगों पर नाश होता हूँ, तो कभी उनके पास खड़ी नहीं हुई लिख लिया कि सब काटता हूँ नहीं काटता ही नहीं जो भी माता है। पसीना ऐसा है जैसे घर का पौधा पौधा उसको पसीने को जैसे खुटने से।

0: बात तो सुनिए।
1: नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम दोनों यही ठहरो। संभालो ये बंगला, ये कारखाना और ये गोश्त का टुकड़ा, गर्म गोश्त का टुकड़ा। ये सब कुछ बेमानी है। मैं रेगिस्तान में झुलस जाऊंगा, भूख और प्यास से दम तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं खंडर हूं, शहरा हूं।

0: ¿Qué es el teléfono? ¿Cómo te hace la vida?
1: ¿Y el teléfono? ¿Qué pasa que la padre que va a चंद लम्हों की बेवफाई थी हजी रूप देती
0: है। बिल्कुल उसी तरह जब दोस्ती का लगाव अपने हाथों मसवार होता है तो जिंदगी में सिवाय हंसने की और क्या रह जाता है। अच्छा देखिए।

0: तमन्नाओं का खून यतीम और बेवाओं की आहें और आंसू होते हैं।
1: रशीद,
0: आपकी मुझे ही सुन रहा हूं। ये सब कुछ मिल जाने के बाद

0: Italian it is. Uh-huh. Show me a card. Here it is.
1: Ah!
0: I'll win again.
1: I won. I won.
2: You see it? जिस तरह तुम ये रुपये बर्बाद कर रहे हो इसका तो काम के खजाने भी खाली हो जाएगा।
0: अरे सीमा, ये रुपया तो बढ़ता ही चला जा रहा है गुनाह के सह की तरह।
2: मुझे तुझसे डर लगने लगा है। मुझे

0: परेशान, फिर तुमने क्या किया? ये भी तुमने मेरी मोहब्बत का सिला दिया, मेरी कुर्बानी को ये रुतबा दिया। याद रखो, तुम भी कभी सुख नहीं पाओगे।
1: सुख मिलने से किसने पाया है? ना तुम्हारे शोहर अनवर ने, ना तुम पा सकती हो। मैं तो खैर पा ही नहीं सकता, कभी ये मेरी जायदाद थी, अब किसी और की है। वो कारखाना भी अब किसी और का है, सब कुछ मिल चुका है। आज तुम बिकी हो, कल मैं बिकूंगा।
0: तुमने बेगानी दौलत को दोनों हाथों से लुटाया है, चूहे ने।

0: बनाई हुई तू भी कप रही है और आसमान तो मेरे पदों की आहट पर मुस्कुरा देता है। मेरा साथ देना है तो तुम्हें भी भागना होगा।
1: लेकिन आपने मेरा नाम अभी तक नहीं पूछा।
0: उसका कोई नाम नहीं होता।
1: मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाऊंगी, आप ये भी तो नहीं जानते।
0: आवारा गुरु का कोई मकाम नहीं होता, ये मैं जानता हूँ।
1: मैं आपके किस काम आ सकती हूँ, मैं किस काबिल हूँ।
0: उसने कोई काम नहीं करता, उसके लिए एक आलम काम करता।
1: आलम हो तो उसने भी तो कुछ काम करता है।
0: वो एक ही काम करता है।
1: वो क्या?
0: वो इश्क की राहों में कांटे बखेरता है।
1: आप तो मजाक करते
0: हैं। नहीं, ये मजाक नहीं, लेकिन मैं मजाक भी कर सकता हूँ।
1: कैसे?
0: सुनो, तुम्हारी गर्दन तो सुराहीदार है।
1: मेरी सहेली मुझसे ज्यादा हसीन और जवान थी, जिसे तुमने।
0: मुझे अब हसीन और जवान औरत नहीं चाहिए।
1: कोई वारदात करने जा रहे
0: हैं? हाँ, एक ऐसी वारदात जिसे सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान ही कर सकता है।
1: वो कैसी वारदात है जिसे टूटा हुआ इंसान भी कर सकता है?
0: वो दौलत को लात मारकर हुस्न से मुंह मोड़कर भागना शुरू कर देता है।
1: लो, तुम तो उसका तैयार होने लगे भागने के लिए।
0: हाँ, मुझे भाग जाने दो।
1: इस तरह भाग कर तुम कहाँ जाओगे?
0: मैं जंगलों में चला जाऊंगा, क्योंकि बस्तियां मुझे निगलना चाहती है, शहर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी नाकामियां ना मुरादियां पंजे फैलाए मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मैं इनसे भागता रहता हूँ।
1: मुझे मालूम है तुम अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते
0: हो। वो दास्तान खत्म हुए जुग बीत गया।
1: लगता है तुम उसे अभी तक भूले नहीं हो, उससे मोहब्बत करते हो, अभी तुम भागते फिरते हो। अगर कोई तुम्हें पैसे के बजाय मोहब्बत के
0: लिए नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए, घर सौदा है।
1: अरे कोई तुम्हें दौलत?
0: मुझे नहीं चाहिए दौलत। दौलत को मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ।
1: तुम क्या चाहते हो?
0: मैं डरा हुआ आदमी हूँ, इसलिए भागता रहता हूँ। भागने में मेरी जिंदगी हो गई है, मैं कुछ नहीं चाहता।
1: भागने में सुकून मिलता है।
0: हाँ, जब भागता भागता थक जाता हूँ तो बेहोश होकर गिर पड़ता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है।
1: बेहोशी का सुकून होती है?
0: अब मेरे लिए यही सुकून है।
1: सुनो, क्या कोई सच सुन सकते हो?
0: तुम बोलो तो सच में सुन लूंगा।
1: नहीं, तुम सच नहीं सुन सकोगे।
0: तुम्हारा सच सुन लूंगा।
1: तो सुनो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
0: माँ? मेरे बच्चे की? मैं बाप? ये तुम क्या कह रही हो?
1: तुम सुन रहे हो?
0: अगर सच है तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा।
1: तुम जानते हो क्या कह रहे हो?
0: हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ साथ भागना होगा।

तभी वहां बढ़ती हुई हवाएं साय साय करके चलती हैं। हवा में खेलने चल रहा है,

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब देवेंद्र सिंह का तहरीर करदा ड्रामा और वन था मंजिल है कहां तेरी। पेशकश प्रेम बोहरा की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल वाहिद से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इतफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में उनकी मौत हो गई थी। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है और मर्दों के क्रिकेट में चौथे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इतफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी अल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरक ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तआवुन से मुतालिक खाका शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरक अखबारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज दो समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे हमख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरक उमंगों की अक्कासी होती है। बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफैन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस माहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी। बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईस्तों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और इसके मौसर होने का मुजाहरा हुआ। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरक अखबार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसअत का अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में क्रिकेट इश्तराक खेलों से मुतालिक बुनियादी ढांचे खिलाड़ियों की सलाहियत बढ़ाने एक दूसरे को जानकारी फराहम करने IPL और BBL साझेदारी इस बड़े आलमी खेल मुकाबलों से कल तावन पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक खेल और 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की दावेदारी शामिल है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में अपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। हमारे नामा निगार ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात से दिफा, तिजारत, तालीम, भारत बहरुल काहिल, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और अवाम से अवाम के राबितों में और ज्यादा बाहमी ताल्लुकात के लिए ऑस्ट्रेलिया की दोनों पार्टियों की हिमायत का इरादा होता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की बढ़ती हुई कुव्वत और आगे आने वाले कई मौकों के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू की। जहां मोदी ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया में भारत की साझेदारी को हासिल गर्मजोशी और वसी तर हिमायत को बहुत कद्र की निगाह से देखते हैं। न्यूजीलैंड मतरायकी बना रहा है जो उम्मीद, यादों और नई शुरुआत की अलामत का मौरी नया साल है। इस मौके पर वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दो दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 40 साल में

न्यूजीलैंड मतराई की मना रहा है जो उम्मीद, यादों और नई शुरुआत की अलामत का मौरी नया साल है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दो दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं, जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: ना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शर्मीली फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म है राजकुमार।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

शहर में या

गलियों में अपना भी कोई घर होगा, हम पर खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला।

पूना लैला और भूपेंद्र की आवाजों में घरौंदा फिल्म का नगमा आपने सुना। यह लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार फिल्म है रूप तेरा मस्ताना।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है भिखारी ठाकुर।
1: भिखारी ठाकुर 1800 दिसंबर 1887 को सूबा बिहार के जिला सारण में उत्तरपुर नामी गांव में पैदा हुई। भिखारी ठाकुर के अहम कारनामों में से एक कारनामा भोजपुरी जबान को नगमे की जबान बनाकर आवाम के सामने पेश करना है। मौजूदा वक्त में भोजपुरी नगमों को सुनकर कोई तजद्दुद का शिकार नहीं होता, लेकिन 100 साल पहले इस ताल्लुक से सोचना भी लोगों के लिए इस तरह से आसान नहीं था। ऐसे में एक शख्स जिसने अपनी कोशिशों काबिज से भोजपुरी जबान को नगमे की भी जबान बना दिया।

0: ठाकुर ने इसके अलावा ड्रामे भी लिखे, उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर तराशमाश की खातिर खड़गपुर भी गए, लेकिन वहां उनके मिजाज के एतबार से मामला बिल्कुल बरक्स रहा। फिर भी ना चाहते हुए भी वो वहां मुकिम रहे, लेकिन यह सिलसिला बहुत तवील नहीं हो सका और वो कलकत्ता गए। जगन्नाथ पुरी से सैर व तफरी करके जब वो अपने वतन वापस हुए तो अपने महबूब मशगली की तरफ मुतवज्जे हुए। दरअसल ठाकुर रामलीला की बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने खुद का एक ग्रुप भी बनाया और रामलीला शुरू की। इसी ग्रुप के लिए कुछ दिनों बाद से खुद ही ड्रामे और गीत लिखने लगे। आगे चलकर इसी हवाले से वो जाने और पहचाने लगी। भिखारी ठाकुर ने जिस ग्रुप को तैयार किया, बाजमरतबा इस ग्रुप के साथ नाचते गाने के साथ साथ खुद अदाकारी की और खुद को स्टेज पर मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने पेश किया। कहीं मुकम्मल तौर पर अदाकारी की तो कहीं वक्ती तौर पर स्टेज पर आकर इस ड्रामे में एक नई जान फूंक देते थे। धीरे धीरे ये ग्रुप भोजपुरी इलाके में बहुत मशहूर हो गया। ये उनकी शोहरत का नतीजा ही कहा जाएगा कि उनके ड्रामे और गीत पटना और बनारस से कितारी सूरत में शाये हुए। उनका सबसे मशहूर ड्रामा बिदिसिया है। ठाकुर का यह ड्रामा इतना मकबूल हुआ कि बाद में इसको बुनियाद बनाकर फिल्म बनाई गई, जिसे नाज़रीन ने खूब पसंद किया। भिखारी ठाकुर के ड्रामों में से दो ड्रामे बिदिसिया और बेटी बेजवा बहुत मकबूल हुए। खासतौर से इन ड्रामों में जो गीत गाए गए और इस धुन को बिदिसिया के नाम से जाना गया। इसकी मकबूलियत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि धुन आज भी लोगों के दिलों की धड़कन है और इसी तरह से आवाम में मकबूल है। बिदिसिया ड्रामे की मकबूलियत का आलम यह है कि इसे मुल्क से बाहर मॉरिशस में भी स्टेज किया गया। नाज़रीन ने वहां भी इस ड्रामे को खूब सराहा। भिखारी ठाकुर ने अपने वक्त में समाज में फैली बुराइयों के खात्मे के लिए भी काम किया। आज इनकी जो पहचान है उनमें एक वजह यह भी है। इसके अलावा भिखारी ठाकुर की पहचान का एक सबब यह भी है कि उन्होंने भोजपुरी में जो गीत लिखे उसके भी बहुत अहम है कि इसके जरिए उन्होंने उन तमाम लोगों के जज्बात की तर्जमानी की जो भोजपुरी जबान जानते हैं और इसमें अपने जज्बात का इजहार आसानी से करते हैं। इसलिए इस बात को कहने में कोई तामुल नहीं कि उन्होंने भोजपुरी को आम के साथ खास भी बना दिया। भिखारी ठाकुर ने औरतों के मसाइल के साथ साथ दलितों के मसाइल को अपने ड्रामों और गीतों का मौजू बनाया। उन्होंने अवामी अदब के साथ साथ मजहबी गीत यानी भजन भी लिखे। भिखारी ठाकुर ने गिरती हुई भोजपुरी तहजीब को नई जिंदगी दी। तकरीबन 100 साल पहले जो पहल की थी वो आज लाखों दिलों की धड़कन है। कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में भोजपुरी गानों की जो पहचान है वो जाहिर है कि तशफी बख्श नहीं है, क्योंकि औरियानियत इसका गलबा इसमें नजर आता है। लेकिन इन नगमों में जुबानी अल्फाज जिस खूबी इस्तेमाल किए जाते हैं वो यकीनन काबिल तवज्जो है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी तहजीब और सकाफत को समाज के साथ इस तरह से जोड़ा कि उन लोगों की पहचान बन गई। यही वजह है कि उनके ड्रामे जहां भी स्टेज किए जाते हैं लोगों के जज्बात की भरपूर तर्जमानी होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजूद था भिखारी ठाकुर। पहली थी डॉक्टर शाहनवाज फैयाज की। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली पेशकश सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में है। फिल्म है मुझसे शादी करोगी।

0: कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज में ये नगमा अभी अपने साजन चले ससुराल फिल्म से सुना। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद
0: अम्बेसडर सज्जनहार। बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है, तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो एलपीजी, एलएनजी या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्री

0: किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए, ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश है जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, जो 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो चाहे एलपीजी हो काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइंड होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है ऑस्ट्रेलिया को, वो इन्हीं का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच के सहयोग का।
1: तो आगे बढ़ने से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अंबेसडर सज्जनार, जैसे कि हमने भी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
0: मेरे विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को उसको एक्सप्लोर करे, बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात इसमें देखेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हम सिविलियन यूजर्स के लिए ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज है उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर

0: मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत तो पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
1: अम्बेसडर सज्जनार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
0: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसे टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और एलपीजी वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटरिम जिसे मैं कहूंगा, ट्रेड अग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले 4 साल में, अगर मैं कहूं, जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है, और वो इसी की बनिस्बत जो एक्टा से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब 1 जनवरी 2026 से 100% जो भारत के पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमने एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेडिंग सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी सीईओ फोरम में अनाउंस किया दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, मतलब करीब 350 मिलियन US डॉलर, वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने तो करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इसलिए मैं समझता हूं जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
1: आगे बढ़ने से पहले अम्बेसडर सज्जनार, आइए सुनते हैं कि आज साइन किए गए एमओयू के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ज्वाइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
2: New landmark agreements, we're expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region.
1: चलते चलते एम्बेसडर सज्जनार आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते कॉमन विजन फॉर फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पर जोर दिया। तो जितने भी एमओयू, जितने भी आज समझौते हुए हैं उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप यानी कि एमएससीआर को भी देखा गया है, तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
0: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशन की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है, इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज हैं, ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलकर ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहां पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है जो आपने कहा जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए।
1: जी एम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: शगुफ्ता यास्मीन से आलमी खबरें सुनिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तआवुन से मुतालिक खाका शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है। बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस माहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी। बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की तीन मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और इसके मौसर होने का मुजाहरा हुआ। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार आवाम से आवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसअत का अहम रोल है। वज़ीर आज़म ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में क्रिकेट इश्तराक, खेलों से मुतालिक बुनियादी ढांचे, खिलाड़ियों की सलाहियत बढ़ाने, एक दूसरे को जानकारी फराहम करने, IPL और BBL साझेदारी नीज बड़े आलमी खेल मुकाबलों से कबल ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक खेल और 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की दावेदारी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में अपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। हमारे नामानिगार ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात से दिफा, तिजारत, तालीम, भारत बहरुल काहिल सिक्योरिटी, सरमायाकारी और आवाम से आवाम के रबतों में और ज्यादा बाहमी ताल्लुकात के लिए ऑस्ट्रेलिया की दोनों पार्टियों की हिमायत का इरादा होता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की बढ़ती हुई कुव्वत और आगे आने वाले कई मौकों के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू की। जनाब मोदी ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया में भारत की साझेदारी को हासिल गर्मजोशी और वसी तरह हिमायत को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता 2 साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे, जिससे आवाम के आवाम से मजबूत राब्तों की अक्कासी होती है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक करार दिया और कहा है कि न्यूजीलैंड की इक्तिसादी खुशहाली के लिए भारत काफी अहमियत रखता है। न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है, जो उम्मीद, यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी 2 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं, जो पिछले 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया खत्ते में बड़े पैमाने पर महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एक महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ता और मुस्तैद मुआशरा मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। नई दिल्ली में सरहदी अजला के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह बात कही। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर कुवैत के दौरा मुकम्मल करने

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म हुआ। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है एक दूसरे के लिए। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये कहानी उत्तर और दक्षिण के प्यार की है। कहानी थी एक उत्तर

भारतीय परिवार की लड़की सपना और एक तमिल लड़के वासु की। दोनों के परिवार गोवा में पड़ोसी हैं। दोनों का प्यार घर वालों को पता चलता है तो तूफान आ जाता है। मोबाइल और इंटरनेट टाइप की चीज तब दुनिया में आई नहीं थी, तो घर वालों ने शर्त ये रखी थी कि अगर दोनों पूरा एक साल बिना एक दूसरे से किसी भी तरह का संपर्क किए बिना बिता लेंगे तभी दोनों की शादी हो सकेगी। वासु हैदराबाद चला जाता है। वो सपना को एक खत लिखता है लेकिन पोस्ट नहीं करता। एक विधवा युवती संध्या से हिंदी सीखने की कोशिश करता है। संध्या उसे भरतनाट्यम भी सिखाती है। फिर वासु और सपना में गलतफहमी होती है।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है एक दूजे के लिए। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की, जो अपने समय में सुपरहिट साबित हुआ। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने, और इन गीतों को आवाज दिया था लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलो

0: छोटा और एस बी बाला सुब्रमण्यम ने। खास बात ये थी कि इस फिल्म के लिए सिंगर एस बी बाला सुब्रमण्यम को जब चुना गया तो साउथ के जाने माने गायक थे वो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को शुरू में संदेह था कि क्या वे हिंदी गानों को के साथ न्याय कर पाएंगे, लेकिन इस पर बालाचंद्रन ने तर्क दिया कि जब हीरो का किरदार ही साउथ इंडियन है तो वो गाने शुद्ध हिंदी में कैसे गाएगा। बाला सुब्रमण्यम की आवाज में साउथ इंडियन टोन फिल्म और गाने दोनों को ही ऑथेंटिक बनाएगा और एस बी बाला सुब्रमण्यम ने आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। श्रोताओं, फिल्म के जो डायरेक्टर थे के बालाचंद्रन राज कपूर को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी फिल्म पूरी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसे राज कपूर को ही दिखाया। उन्हें पूरी फिल्म तो अच्छी लगी, लेकिन वो चाहते थे कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो। उन्होंने ये बात बालाचंद्रन को कही, लेकिन बालाचंद्रन ने मना कर दिया और बोला जो टीस या जो दर्द आपके मन को परेशान किए हुए है, वही टीस वही दर्द जब दर्शकों के मन में भी उठेगी तो फिल्म सुपर हिट होगी। तो श्रोताओ, चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।
1: आज तो पार्टी चाहिए, फैमिली के साथ सेल्फी लेंगे, आइडिया यही करते हैं पार्टी, फिर सब पार्टी के चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं आपको दे डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करना है।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

Thank you.

0: शिंपु मामा आपको बता दें कि जब ये फिल्म बनके तैयार हुई तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नुकसान हो जाने के डर से रिस्क लेने को तैयार नहीं था, तो प्रोड्यूसर लक्ष्मण प्रसाद को खुद ही एक दूजे के लिए रिलीज करनी पड़े। फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए शुरुआत में कुछ ही प्रिंट्स निकले, लेकिन हफ्ते भर में ये फिल्म का क्रेज इतना बढ़ा कि नए प्रिंट्स जोड़ने पड़े। महज 10 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा कमाए। इतना ही नहीं, एक दूजे के लिए पूरे 2 साल तक सिनेमा घरों में लगी रही और नेशनल अवार्ड समेत 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दिलों पर भी राज किया। वासु और सपना की प्रेम कहानी, लैला मजनू, हीर रांझा जैसे क्लासिक लव स्टोरीज की लिस्ट से जुड़ गए। हालांकि फिल्म का अंत बहुत ही इमोशनल था और कई दर्शकों की आंखें नम हो गई थी, लेकिन यही तो है असली सिनेमा की खूबसूरती, जो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। तो श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, तो ये आखिरी गीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं आपके जो मेल आए हैं उनको। ये मेल आया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी, पर्ल और विलिस का, और लालगिरी, गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित गोस्वामी, रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से है, और इनके साथ है पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुलराल और अभिराज जी हैं गांव लोहागढ़, ठाकुरा वाला से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर ये जुड़े हुए हैं, जालंधर पंजाब से। तो श्रोताओं, अगला गीत जो है और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है, अब ये उसे सुनते हैं। और ये जो गीत है, इस गीत में सबसे मजेदार बात ये है कि इसके जो बोल हैं सिर्फ हिंदी फिल्मों के नाम से तैयार किए गए हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माई गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्ह। इंग्लिश।

0: हमारे तुम्हारे
1: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की फिल्म एक तुझे के लिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपने दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन 3 बजे फिर से मिलना नहीं भूलिएगा मैटनी मेलोडीज में।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।

तुम तो वैशाली जहाँ संपर्क प्रोग्राम मेलबॉर्न दे मार्वल स्टूडियो विखे आयोजित मेलबॉर्न में मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में है जिसे करीब 25,000 लोगों ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के करीब 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने दोनों मुल्कों दरमियान एक जीवंत पुल दसा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी भारतीय भाईचारे की शलाघा करते कहा कि बहुत सभ्याचारक ताकत ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली महत्वपूर्ण योगदान पा रही है।

पता है दोनों नेताओं ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया खेत सहयोग ढांचा जारी किया जो खेत विज्ञान तो खेत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र सहयोग में नवी गति देगा। यह पहलकदमी जो समय शुरू की गई है जो भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इस मौके क्रिकेट जगत में एक महत्वपूर्ण ऐलान भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया की मर्दों की बिग बैश लीग का उद्घाटन मैच इस साल दिसंबर चेन्नई विखे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के तीजे भारतीय गेट से आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी आज न्यूजीलैंड के हमदुप्ता क्रिस्टोफर लक्सन नाल गलबात करेंगे। दोनों नेता समुचे दुवल संबंधों का जायजा लेंगे जिस विच पिछले दो साल महत्वपूर्ण प्रगति हुई है खास करके व्यापार प्रबंध और रक्षा क्षेत्र। न्यूजीलैंड की यह यात्रा 40 साल किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। श्री मोदी मुख्य व्यापारक के खेल शख्सियतों की गलबात करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड दरमियान मौजूद मजबूत लोगों के संबंधों के चौथारे वजो प्रधानमंत्री इस यात्रा दौरान भारतीय प्रवासों के वे इकट्ठ में भी संबोधन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूबे लिए एक खास जाब्ते का खरा तैयार करने वास्ते सर्वोच्च अदालत के सेवानुक्त जज रंजन देसाई की अगुवाई हेठ सत्त मैंबरी कमेटी के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कल महाराष्ट्र विधानसभा च ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में दर्ज राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों मुताबिक हरेक राज में एक सम्मान सेवा जाब्ता लागू करने बारे विचार चर्चा करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था मुताबिक सूबा सरकार ने 2026 के बजट इजलास दौरान एक सम्मान सेवा जाब्ता लागू करने लिए एक कमेटी का गठन किया। यह कमेटी अगले छह महीनों के अंदर अंदर सूबा सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आने सर्दियों के इजलास दौरान नागपुर विधानसभा के दोनों सदनों के सामने एक समान सिविल जाब्ता बिल पेश करने पर विचार कर रही है। यह खबर आकाशवाणी से सुन रहे हैं। साड़ा एक्स हैंडल है @AIRRNJalandhar। साड़ा फेसबुक पेज है RNE-AIR Jalandhar। यूट्यूब से साड़ा चैनल है।

जेकर किसी व्यक्ति ने अभी तक अपना जन्म फॉर्म नहीं भरा तो वो तुरंत अपने बूथ लेवल अफसर नाल संपर्क करे जहां इस विशेष कैंप दौरान अपने नजदीकी पोलिंग बूथ ते जा सकते ने। 10 अगस्त में प्रकाशित होने वाली खरड़ा वोटर सूची विच हरेक योग वोटर का शामिल होना यकीनी बनाने लई नागरिकों की सरगर्म जनतक भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अफसर इस प्रक्रिया च वोटां की सहायता वास्ते सारे निर्धारित पोलिंग बूथां ते मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने अज उत्तराखंड में भारी मीह की चेतावनी जारी की है। अगले तीन तो चार दिन हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भी भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। इस दौरान सवेर तो ही राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में हल्की तो दरमियानी वर्षा हो रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार मीह पै रहा है। मौसम विभाग ने पांच जिले कांगड़ा मंडी शिमला सोलन और सिरमौर में कुछ थावां पर भारी मीह लई येलो अलर्ट जारी किया है। सिरमौर और सोलन जिले के सारे विद्यक अदारे अज बंद रहे। उत्तराखंड में अज भी भारी मीह जारी रहने की पेशेनगोई की गई है। मौसम विभाग ने कई जिले भारी मीह की चेतावनी जारी की है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ई 85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो म्यारी ई वी पेट्रोल और करीब 20 रुपए की लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि ई 85 सिर्फ उन्होंने वाहनों में उपलब्ध होगा जो खासतौर से इस ईंधन की वरतों करने के लिए तैयार किए गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड 2026 अपने फिर संबंधों के 100 साल जश्न मना रहे हैं। हाथी शुरू हुई यह यात्रा दोनों देशों दोस्ती और सहयोग का एक

0: वेर्गो में एक रिपोर्ट।
1: भारत और न्यूजीलैंड विचकार खेल संबंध 1926 विच शुरू हुए सन जदों भारतीय फौज की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी इस इतिहासिक टीम का हिस्सा बने। इस दौरे में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत मनिया जाता है। यही वो थां सी जिथे उन्होंने अपने बेमिसाल हॉकी हुनर तो दुनिया नूं जाणू करवाया। एक सदी बाद भी दोनों देशों विचकार खेड संबंध मजबूत होंदे जा रहे ने। इस साल भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड विच मेजबान न्यूजीलैंड नूं हरा के FIH महिला नेशन कप जीतिया। हॉकी न्यूजीलैंड के सबका मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1976 के ओलंपिक सोन तमगा जेतू रमेश पटेल ने आकाशवाणी नाल एक विशेष इंटरव्यू च कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड फेरी दोवां देशां विचकार खेड सहयोग नूं नवी प्रेरणा देगी।

0: नमन।
1: इस 100 साल के खेल सफर ने साबित कर दिया है कि हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं है, सगो भारत और न्यूजीलैंड विचकार दोस्ती, विश्वास और लोगों तो लोगों संबंधों का एक मजबूत पुल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तो आकाशवाणी खबरों लिए मैं काजल।
2: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान मेजबान इंग्लैंड खिलाफ इतिहासक क्रिकेट टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय मुताबिक दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। यह पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस 4 रोजा टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 33,000 तो लोगों ने पहले ही सीटा बुक करवा लिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तेलंगाना दौरे के तीजे ते आखिरी गेड़ च न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। पंजाब विच विशेष दिवस और SIR प्रक्रिया लई सूबे भर के सारे पोलिंग बूथों ते कल ते दो दिन विशेष कैंप का आयोजन होगा। मौसम विभाग वालों उत्तराखंड विच भारी मील अलर्ट जारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ दोपहर बाद 3:30 बजे इतिहासक क्रिकेट टेस्ट मैच खेलेगी। इसके राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन।

अदब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममंसब से बातचीत करेंगे। मुल्क में ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलयकार करार दिया है। आईएमडी ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हममंसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता दो साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इकतसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज़ की इस बातचीत से जामे इक्तसादी तआवुन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुज़ाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दोतरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती

0: यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का इयादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तआवुन, नीज एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरक ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। यह दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलती मुश्तरक खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामा निकास से।
1: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, ख्वाह वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या एनसीजी में खेलकूद की सिफारत हो, दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेहकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने तीन मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराह रास्त न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल नशीली दवाओं के जब्तों को मुस्तहकम बनाना है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल दवाओं के लिए लाइसेंस की जरूरत में मौजूदा इस्तिस्ना को खत्म कर दिया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12% से ज्यादा एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल वो दवाएं जिनकी मकदार 30 मिलीलीटर से ज्यादा है, अब इन पर शेड्यूल के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की मसनूआत के लिए अब नशीली अशिया और कॉस्मेटिक्स कानून 1940 के तहत लाइसेंस की जरूरत होगी। भारत ने महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और उसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती, इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, ईजा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की शियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि साफ सुथरी तवानाई की मुल्क की बिजली की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि काबिल तजदीद वसाइल से इस महीने की 6 तारीख को बिजली की सप्लाई का 52% हिस्सा हासिल हुआ है। वजीर मौसूफ ने इसे भारत के माहौल के लिए साजगार तवानाई के इको निजाम की बढ़ती हुई ताकत और इन्हिसार का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की कयादत में भारत बिजली के मैदान में रफ्तार और अजम के साथ लगातार तरक्की कर रहा है। नीति आयोग की रुकन डॉक्टर जोरामानिया ने यूनिसेफ भारत नुमाइंदा सिंथिया मैकैफ्री और उनके वफद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसका मकसद बच्चों पर मरकूज तरक्की, स्कूल तालीम और इंसानी तरक्की से मुतालिक इश्तराक को तकवीत देना था। नीति आयोग के मुताबिक बातचीत में महफूज और सबकी शमूलियत वाली आमोजिश, बुनियादी खानदगी और साबसा की तालीम, तलबा की खुशहाली, साइबर हिफाजत और खासतौर पर उमंगों वाले जिलों और ब्लॉकों में डिजिटल सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. ان کے سب سے بڑے بیٹے سید

0: From 4th June 2026 to 9th July, monsoon rainfall and departure was negative and minus 14 over our country. And main zone of negative departures was recorded over eastern parts of Uttar Pradesh, Bihar and Northeast India, in South Kerala and coastal Karnataka, and western parts of the country, Saurashtra and Marathwada.
1: Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting many areas. A report.
2: The southwest monsoon continues to remain active in Himachal Pradesh, with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. The Chardin Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 mm since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
4: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।

0: And we've always had a good close relationship with India, playing hockey, and the early Indian teams that came here 100 years ago.
1: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
1: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा सीआरएसवी की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजरा सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
3: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047.

0: national integration, cooperative federalism, and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुनील ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगम्बर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने शत प्रतिशत डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है। पर आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है ये पॉकेट मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज

इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये अंदाजा आप जरूर लगाइएगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं।

0: अपडेट के बाद कुछ लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को सिनेमा में जुबान दी। उन्होंने भोपाल की मिट्टी से उठकर बॉलीवुड तक अपना नाम लिखा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसे भारतीय हिंदुस्तानी कवि और गीतकार की जिनका नाम है असद भोपाली। इनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के पुत्र के रूप में हुआ था। असद भोपाली का असली नाम असदुल्लाह खान था। बचपन से ही शायरी का शौक मुशायरों में पढ़ते थे, लेकिन उनकी यही लगन उन्हें मुंबई खींच लाई। 50 के दशक में मुंबई आए, जेब में शायरी थी और दिल में सपने।
1: जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, तो उसका ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुमने शौक कहा
2: भूल गई
1: ना, तुम नहीं बदलोगी।

0: जो फूलों की बेलें नजर
1: अज़र साहब ने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, गीत लिखते लेकिन लोग सुनते नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद फिल्मी दुनिया ने उन पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया और उनके अंदर सबको एक कलाकार नजर आने लगा। अज़र भोपाली साहब को पहला ब्रेक 1958 में आई फिल्म मुजरिम से मिला। 60 और 70 का दशक अज़र भोपाली साहब के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। राज कपूर, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र सबकी फिल्मों के लिए लिखा। अज़र साहब की खासियत थी उनकी शायरी। बहुत आसान थी, कोई भारी लफ्ज नहीं थे, सीधे दिल में उतर जाती थी।

सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है असद भोपाली साहब। असद भोपाली साहब ने फिल्मों के अलावा बहुत बड़े शायर भी थे और मुशायरों की जान थे। असद साहब दोस्तों की महफिल में बैठकर घंटों शायरी किया करते थे।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। बात हो रही है असद भोपाली की, तो असद भोपाली साहब भोपाल से मोहब्बत उनकी आखिरी दम तक रही। भले ही वे मुंबई में रहते थे, पर कहते थे कि मेरी जुबान में भोपाल बसता है। 1989 में आई हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए असद साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक

जिंदगी के आखिरी सालों में असद शाह बीमार रहने लगे। 9 मई 1990 को मुंबई में उनका निधन हो गया। आज भी जब दुनिया बनाने वाले गीत बजता है तो असद भोपाली साहब हर किसी को याद आ जाते हैं। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों के लिए लिखा और कई अवार्ड जीते। तो दोस्तों, ये थी असद भोपाली साहब की कहानी, भोपाल के एक लड़के से लेकर बॉलीवुड के माने हुए गीतकार तक का सफर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। इस कार्यक्रम से अपने रेडियो सखी निधि वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आदाब। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

0: दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का उदाहरण किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। इस तरह फ्रांस तारीख में पहली मरतबा लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इधर आज रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज उस वक्त तारीख रकम करेगी जब वो लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाने वाला खवातीन क्रिकेट का यह अब तक का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मैच को यादगार बनाना चाहेगा। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ये मैच खेल रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मोदी ने न्यूजीलैंड के दो रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में महाजाराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलेखकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और खवातीन क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले अब तक के पहले टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश अंकुश फिल्म का नगमा, आवाजें अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और साथियों की, मौसीकार कुलदीप सिंह।

dil dhar jani

0: शायरों में शामिल हैं जिनके अशार आवाम की जबान पर राइज हैं। उनके बेशुमार अशार लोगों को आज भी याद हैं। जैसे यह शेर समाप्त करें, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सामीन, दा के जमाने में जबान की दो सफ़ें थी, एक इल्मी और दूसरी अवामी। गालिब इल्मी जबान के नुमाइंदे थे और दाग की शायरी अवामी थी, वो अवाम से गुफ्तगू करते थे। दाग फिक्री शायर थे और उनके मौजूआत में अवाम और खवास दोनों की दिलचस्पी ज्यादा होती है। उनका यह शेर मुलाहिजा करें, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क्यामत का इंतजार किया। समीन, दाग की जबान की दाद तमाम अहले इल्म देते हैं। सादगी उनकी नजर में जबान का हुस्न है। उन्होंने शायरी को पेचीदा तरकीबों, फारसी और अरबी के सकील अल्फाज से बचाया। उनकी शायरी में सीधी सादी जबान के साथ सरासतवार रवानगी भी है। उन्हें अपनी जबानदानी का एहसास भी है। उनका यह शेर देखें, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू जबान आते आते। समीन, आइए अब चलते हैं आज के असल प्रोग्राम रू बरू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी या किसी माशी शख्सियात से आपको रूबरू करवाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनसे बात करें और उनके जो तजर्बात और मुशाहदात हैं उनसे इस्तेफादा करें। तो आज इसी सिलसिले के तहत हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई दहाइयों तक रेडियो की नशियात और ड्रामे की दुनिया में अपनी खदमात अंजाम दी। आपने न सिर्फ बेशुमार यादगार ड्रामे प्रोड्यूस किए बल्कि कई नए फनकारों, लिखने वालों और आवाज के फनकारों की तरबियत में भी अहम किरदार अदा किया। आइए खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरफराज अहमद साहब का और उनकी बातचीत से मुस्तफीद होते हैं। आपसे महवे गुफ्तगू है रेडियो की एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब मुबीन खान।
1: उर्दू मजलिस के रूबरू प्रोग्राम के साथ मैं मुबीन अहमद, सभी सामईन को मुबीन का आदाब। आप सभी को पता है कि रूबरू में हम ऐसी शख्सियत को मधु करते हैं प्रोग्राम में जिनसे हम वो बातें जानने की कोशिश करते हैं जिनसे एक जो नई नस्ल है वो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नई चीजें जान सके। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है सरफराज अहमद साहब को, जो नशरियात, जो रेडियो की नशरियात में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। 50 साल से ज्यादा हो गए उनको खिदमत देते हुए रेडियो के लिए। सरफराज साहब, आपका हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में।
2: शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब।
1: सरफराज साहब, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हम जो नशरियात है आकाशवाणी की, उसके 90 साल पूरे होने के सिलसिले में एक जश्न का माहौल बना हुआ
2: जी, जी।
1: और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 50 साल से ज्यादा हो गए आपको रेडियो ब्रॉडकास्ट में, आपने जो सर्विसेज दी हैं, जो आपने खिदमत दी हैं, तो ये जो रेडियो है, रेडियो ब्रॉडकास्ट, आपका जो बचपन रहा होगा, तो किस किस्म के प्रोग्राम आप रेडियो पर सुना करते थे?
2: ये हमारा जुनून रेडियो से तकरीबन 1952 से शुरू हुआ, जब उर्दू मजलिस हम सुना करते थे
1: जी।
2: आधा घंटे का प्रोग्राम होता था और उसमें तीन हिस्से होते थे उसके, एक अदबी होता था, एक शायराना होता था और एक म्यूजिकल होता था, जिसमें कव्वाली वगैरह सुना। अक्सर हबीब पेंटर की कव्वाली, शंकर संधू की कव्वाली उसमें होती थी। उसके अलावा सिराज अनवर साहब के लिखे हुए छोटे छोटे खाके उसमें नशर होते थे, जिसमें दिल्ली की टकसाली जबान, क्योंकि सिराज अनवर साहब जामा मस्जिद से ताल्लुक रखते थे, जामा मस्जिद के इलाके से, उनकी वहां फोटोग्राफी की दुकान थी, तो वहां दिल्ली के कारखानदारों की बातचीत छोड़ा करते थे।
1: तो सामने सरफराज साहब से हम बातचीत कर रहे हैं और सरफराज साहब एक ऐसी शख्सियत है जो रेडियो पे तो कम उनकी आवाज सुनाई दी, लेकिन रेडियो प्रोडक्शन के हवाले से जब भी हम कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो उसमें प्रोडक्शन का जो पार्ट है, जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसमें सरफराज साहब का अहम रोल रहा है। اور سرفراز صاحب اردو سروس سے وابستہ رہے، اردو مجلس سے وابستہ رہے، اور ریڈیو کی ایک جانی مانی پہچانی جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایسی شخصیت ہیں جن کو ہر جو شخص ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے جانتا ہے، اور آج بھی آپ

0: रिटायर हुए करीब करीब आपको 20 साल हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी आप एक्टिव हैं और मास मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने हर दौर देखा है। आपने बताया कि बचपन में आपने रेडियो सुना और उर्दू मजलिस के प्रोग्राम सुने, उसके बाद फिर आप रेडियो में आए, तो रेडियो में किस तरीके से जब आप आए और यहाँ पे सर्विस आपने शुरू की, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आपको पता चला कि रेडियो में भी सर्विस की जा सकती है।
1: अच्छा, मैं क्या था कि मुझे बताया गया था कि एक तरह की उर्दू सर्विस खाली है, आप दरखास्त दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे कॉल आ गई, रिटन टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया उर्दू सर्विस के लिए। उस वक्त मैं स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ पर रखा गया था। उस जमाने में एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब मिसेज इंदिरा गांधी ने INB संभाला तो उन्होंने ये सारे जितने भी स्टाफ आर्टिस्ट थे उन सबको रेगुलर कर दिया
0: जी।
1: तो मुझे आए हुए 6 महीने हुए थे कि मैं रेगुलर हो गया
0: जी
1: उर्दू सर्विस के अंदर।
0: उर्दू सर्विस उस वक्त
1: उर्दू सर्विस, असल में उर्दू सर्विस 15 मई 1965 को आधे घंटे की शुरू हुई थी
0: जी
1: तजर्बाती तौर पर, और उसको नाम दिया गया था उर्दू प्रोग्राम।
0: मतलब आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो मजलिस सर्विस उर्दू सर्विस के लिए हुआ था
1: जी। जब 16 मई 1966 को पूरा फुल फ्लेज स्टेशन बन गया उर्दू सर्विस, तब मैं आया था। तो उस वक्त एक ही अनाउंसर थे यहाँ पर, मरहूम अंदार अहमद साहब
0: जी
1: वो अनाउंसर थे। बाद में उसी वक्त मुजीब सिद्दीकी कानपुर से आ गए, उसके बाद दिल्ली से ऐसम शफीक
0: जी,
1: कानपुर से इकबाल वारसी। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत आवाज है,
0: एक कहकशा
1: बन गया, स्टाफ का कहकशा बन गया। उसके बाद जो दूसरे लोग थे जैसे सलाम मशी शेरी
0: जी
1: अदबी प्रोग्राम देखते थे, के नैयर, उसके बाद उस्ताद हफीज अहमद खान जो म्यूजिक देखते थे, और महमूद हाशमी जो करंट अफेयर्स देखते थे, रोया रिजवी
0: जी।
1: तो इस तरह से ये लोग आते चले गए, अमीर खल्फी साहब
0: जी।
1: तो ये पूरा एक बहुत ही मजा आता था काम करने में।
0: अच्छा,
1: प्रोग्रामिंग में अनवर खान साहब
0: जी।
1: अच्छा, अनवर खान साहब से पहले कुलदीप अख्तर साहब थे, और जब मैंने ज्वाइन किया जब कुलदीप अख्तर साहब थे और वो रिटायर होने वाले थे।
0: तो आपके प्रोडक्शन का जो काम है वो कैसे सीखा, जो आप जिनको उस्ताद मानते हैं?
1: वो मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था, कभी रेडियो नहीं देखा था, एक तस्वुर था रेडियो का।
0: जब आपका रेडियो में अपॉइंटमेंट हो गया
1: तो मैंने कोशिश की कि मैं हर शोबे में मालूमात हासिल करूं।
0: जब आपकी जिम्मेदारी दी गई तो किस तरह का काम होता था और किस तरह की मशीनें थी?
1: ये मशीनें हमारे यहाँ एक होता था CRR, सेंट्रल रिकॉर्डिंग रूम
0: जी,
1: वहाँ एक हॉल था, उसके अंदर जगह जगह मशीनें लगी, दो दो तीन तीन मशीनों के सेट लगे हुए थे। वहाँ मैंने काम शुरू किया मुख्तलिफ प्रोग्राम, जो मेरा पहला प्रोग्राम था वो मैंने फीचर था, उसका नाम था फुटपाथ से फुटपाथ तक।
0: हाँ,
1: ये तमाम जितने बाहर बेचारे जो काम करते हैं, रोजगार करते हैं, छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं, खमचे वाले हैं, जो छोटे दुकानदार है, उन सबके इंटरव्यूज पर बेस्ड था
0: जी,
1: उनके तजर्बात पर बेस्ड था, उनकी मुश्किलात का सारा था। तो वो मैंने प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम फुटपाथ से फुटपाथ तक, तकरीबन 67 के आसपास की बात।
0: तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी आप बाहर जाते होंगे?
1: हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए। उस जमाने में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी ज्यादा थी नहीं, एक वर्टिकल टेप रिकॉर्डर होता था, वर्टिकल टेप रिकॉर्डर छोटा था, 3-4 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे, सेल्स होते थे वो लेके जाते थे, उससे हम रिकॉर्डिंग करते थे। तो उसको फिर आकर अपने कंट्रोल रूम में, उसमें CRR में उसकी डबिंग करते थे। अनाउंसर हमारे उस वक्त होते थे SM शफीक
0: जी।
1: तो मेरे जितने भी प्रोग्राम है उसकी जो वॉइसिंग की है वो SM शफीक साहब ने की है
0: जी।
1: और बहुत से प्रोग्राम हमने साथ मिलकर बनाए हैं, उसमें गीतों वाली कहानियां बहुत बनाई है, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर हो गई थी यहाँ पर।
0: अच्छा, सरफराज साहब जिस स्टूडियो में बैठे हैं, इसकी जो दीवारें हैं ये आपके आशना है
1: जी? बिल्कुल।
0: आप ये बताइए कि ये स्टूडियो जो आप बापू स्टूडियो के नाम से जाना जा रहा है, इससे पहले ये स्टूडियो कैसे जाना जाता था, और क्या कुछ लाइव प्रोग्राम्स में होते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, या जो आज से
1: ज्यादातर इंटरव्यू हुआ करते थे
0: जी?
1: पता चला था कि गांधी जी भी जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए आए थे तो वो इसी स्टूडियो में तशरीफ लाए थे
0: जी।
1: लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड किया जिन लोगों को, उसमें बाबू जगजीत राम
0: जी,
1: हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए बाद में, किसी नरसिंह महाराज

0: जी उनको मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके अलावा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते थे, अदीब आते थे, उनका इंटरव्यू भी यहाँ किए हैं, जैसे प्रोफेसर आलम मसरूर साहब
1: जी,
0: शमीम हनफी साहब उस जमाने में अलीगढ़ में थे, डॉक्टर शमीम हनफी
1: जी,
0: ये सब लोग उनको इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया।
1: अच्छा, आपने जिक्र किया अनवर साहब का
0: जी
1: ड्रामे के हवाले से, अनवर साहब तो वो जब ड्रामा प्रोडक्शन होता था
0: जी,
1: तो आप यहाँ पर तो एक मजमा जैसा रहता होगा, क्योंकि
0: जबरदस्त
1: जो किरदार आते थे लाइव परफॉर्मेंस देते थे सारा कुछ।
0: एक बात क्या सुनाता हूँ तो,
1: जी बताइए।
0: एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, उसमें नाजरा बब्बर रोल कर रहे थे, मेन रोल
1: जी,
0: अनवर खान पैनल पे थे, मैं उनके साथ था। तो नाजरा बब्बर एक लफ्ज को जिस तरह अनवर खान चाहते थे उस तरह अदा नहीं कर पा रहे थे। नाजरा ने कहा कि खान साहब फिर आप ही बता दीजिए। तो अनवर खान साहब माइक्रोफोन पे पहुंच गए, मुझसे कहा रिकॉर्ड करो। उन्होंने एक ही जुमला
1: जी
0: 10 बार रिकॉर्ड किया अनिलंदा। और फिर नाजरा को बुला के कहा ये सुनो, जो 5 बार है मुझे ये चाहिए,
1: मतलब एग्जाम्पल सेट करके फिर बताने के ऐसा हमें चाहिए,
0: इतना चाहिए
1: जी।
0: तो नाजरा बब्बर रोने लगी थी।
1: अच्छा, एक बताइए कि जिस तरह से हमारा रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 28 मिनट के आसपास हम प्रोडक्शन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीरीज होती है, कोई ऐसी सीरीज जिसमें आपको 6 महीने लग गए हो, साल लग गई हो प्रोडक्शन में?
0: एक सीरीज शुरू की थी यहाँ पर दानिश इकबाल की
1: जी,
0: वो गैर मुल्की जबानों का तजुर्बा था कहानियों का, उसमें मुझे मजा भी आया काम करने में, और वक्त भी लगा, काफी लगा वक्त लगा, खासतौर पर आर्टिस्ट के सिलेक्शन में दुश्मनी हुई, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट जो है वो उस वक्त उर्दू के तो थे नहीं,
1: ठीक,
0: हिंदी के थे, उन्हें हिंदी में स्क्रिप्ट दी जाती थी
1: जी,
0: तरफ उर्दू का होता था, अल्फाज उर्दू के होते थे, तो उसकी अदायगी में उन्हें बहुत पक लगता था, और वो उनको बहुत समझाना पड़ता था इस सिलसिले में, गलत जगह नुकता लगाते थे।
1: अच्छा,
0: अभी आपने देखा होगा
1: जनाब की जगह जनाब कर देते हैं लोग,
0: आप देख रहे हैं, बल्कि आजकल भी जो बाहर के चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं, उनका तरफ बहुत खराब, इसलिए आपको खबर कर,
1: इसलिए तो आकाशवाणी की जो जुबान है वो एक बेंचमार्क है।
0: रेडियो जो है, रेडियो ने हमको बोलना सिखाया, हमको बताया कि कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए
1: जी,
0: और जिस जिस लफ्ज पर हमें जोर देना है उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जो जबान की तहजीब है वो हमें रेडियो से मिली।
1: अच्छा सरफराज साहब, एक चीज बताइए, जब आप प्रोडक्शन करते थे ड्रामा का, कई बार होता है स्क्रिप्ट में भी बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट जिसने दी है तो जरूरी नहीं कि रेडियो के हवाले से वैसी स्क्रिप्ट तैयार करके दी, तो ये क्या जो उस वक्त के प्रोड्यूसर्स थे वो अलाउ करते थे कि आप उनकी हेल्प करें और उसमें चेंज लाने के लिए?
0: ऐसा हुआ, बारहा हुआ है, मेरा वास्ता कुलदीप अख्तर साहब से ज्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि रिटायर होने वाले थे, उसमें अनवर खान साहब के साथ ज्यादा रहा हूं, और अनवर खान साहब के बाद मुमताज शकीब है जयपुर से, मुमताज शकीब में ये कमजोरी थी
1: जी,
0: कि वो उस कमजोरी को की वजह से कभी कभी जुमले में डायलॉग में फ्लो नहीं आता था,
1: अच्छा
0: उसको इधर उधर करना पड़ता था
1: जी,
0: इसके मुमताज शकीब का ही होता था
1: जी,
0: लेकिन उसमें तब्दीली और इसलाह जो है मुझे करनी पड़ती थी, ये हुआ
1: असर लाने के लिए
0: जी।
1: अच्छा, एक चीज सरदार साहब, आपने उर्दू मजलिस भी देख लिया, उर्दू सर्विस में भी काम करके देख लिया, कोई ऐसी शख्सियत जो बाहर से आई हमारे पास, जिनको हम एज ए टॉकर बोलते हैं, जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ के गए, जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ा कि मुझे भी ये बदलाव लाना है अपनी शख्सियत में, मैं अपने आप को इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, कोई ऐसा मतलब आपके साथ?
0: इस वक्त मेरे जहन में नहीं है।
1: और रेडियो में कोई ऐसी शख्सियत रही जो जिनसे आपने सीखा?
0: जी, लोग
1: बताइए,
0: जैसे चरणजीत
1: जी,
0: उनका बहुत मशहूर एक सीरियल था ढोल की पोल,
1: ढोल की
0: पोल सुना होगा, 1962 के आसपास, फिर उसके बाद शरद चंद्र
1: जी,
0: उनसे मैंने टाइमिंग सीखी, टाइमिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है
1: जी,
0: टाइमिंग उनसे सीखी शरद चंद्र से, अब तो खैर वो नहीं रहे, उसके बाद दीना भाई, दीना नाथ
1: जी,
0: तीन कैरेक्टर ऐसे थे उर्दू ड्रामे के, उर्दू ड्रामों में, जिसमें सर्वसंजर, दीना नाथ और बिजेंद्र मोहन, खलीफा चंदू वगैरह ये क्या करते थे, और भाई मुमतियाज
1: जी,
0: इस तरह के कैरेक्टर करते थे, ये लोग जो थे इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। उसके बाद आखिरी दौर जो है वो SSS ठाकुर
1: जी,
0: ये डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा थे, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और ये जो थे वो उनकी खास बात ये थी कि जो इफेक्ट थे, साउंड इफेक्ट, उसको वो स्टूडियो में लाइव करना चाहते थे, लाइव एक प्रोग्राम कर रहे थे महाभारत
1: जी,

0: आजकल तो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, मगर उस वक्त
1: तो उस जमाने में नहीं थे,
0: बनाए जाते थे उस वक्त जी।
1: तो उसमें एक इफेक्ट था सुदर्शन चक्र
0: जी,
1: उसका इफेक्ट निकालना था और कई दिन हो गए वो हमको वो इफेक्ट जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मैं जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग हाउस में दाखिल होने लगा तो मुझे टीम का एक टुकड़ा नजर आया
0: जी,
1: सड़क पे पड़ा हुआ, उल्टा पड़ा हुआ,
0: तो जहन में रहता होगा कि इफेक्ट चाहिए तो कहां से मिलेगा ये इफेक्ट जी।
1: टुकड़ा निकाला, उसको लिया, अंदर आकर कील से उसमें दो सुराख किए बराबर बराबर
0: जी,
1: और उसमें धागे पिरो कर उसको ऐसे करके घुमाया
0: तो आवाज आई,
1: खींचा तो उससे जो आवाज निकली घूम हुई तो वो हमारे काम आई सुदर्शन चक्र के इफेक्ट के लिए
0: जी।
1: एक और इफेक्ट बहुत मुश्किल था, एक गाना था जिसमें कितनी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए
0: अच्छा,
1: लेकिन फिर भी रूह आती है, कैंसिल होती है
0: तो
1: मर्डर हो जाता है,
0: और रेडियो भी एक चीज बताना,
1: रेडियो पर तो अब ये किस तरह किया जाए कि भाई एक रूह आती है और एंटर होती है और अगर वो मर्डर हो जाता है। तो हम यहाँ स्टूडियो वन है, इसमें बहुत बड़ा नकारा रखा हुआ था
0: जी,
1: अब नहीं है, अब पहले नकारा रखा हुआ था और उसके जो स्ट्राइकर थे वो दीवार पर लगे हुए थे एक तरफ के, तो मैं उधर से गुजर रहा था तो मेरी नजर उस पर पड़ी, तो मैं टेप रिकॉर्डर टेप ले आया ऊपर से टेप स्कूल में जाकर उसको ऑन कर दिया, रिकॉर्ड के लिए स्टूडियो में जाकर उसके बाद मैंने स्ट्राइक किया
0: अच्छा,
1: जब उसने स्ट्राइक किया वो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके वाइब्रेशन सारे आ गए
0: जी जी जी।
1: जब मैंने उसे इस्तेमाल किया है तो वो स्ट्राइक को हटा दिया
0: अच्छा,
1: सिर्फ वाइब्रेशन लेकर उसको इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगा
0: जी जी जी,
1: तो उससे ऐसा लगा कि वो रू आ रही है और वो मर्डर हो गया।
0: अच्छा सरदार साहब, जब ड्रामा कहते हैं कि एक कंप्लीट आर्ट है रेडियो की, इसमें मौसीकी अपनी एक अलग रोल अदा करता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो उस वक्त जब आपको कोई म्यूजिक का इस्तेमाल करना होता है इफेक्ट्स वगैरह, क्योंकि म्यूजिकल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो साजिंदे खुद स्टूडियो आते थे
1: नहीं,
0: कि आप कहीं से रिकॉर्डिंग करके आते थे फिर उसको
1: जी, हमारे पास जो प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक है
0: जी,
1: उसमें से हमें इजाजत थी कि सिर्फ हम 15 सेकंड यूज कर सकते हैं कोई भी गाने के म्यूजिक को
0: जी,
1: वहां से बेचे।
0: मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, नए नए आए गए उस टाइम इतना म्यूजिक तो अवेलेबल नहीं होगा,
1: नहीं होता था जी, तो जो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी उसी से हम लेते थे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो एप्रोप्रिएट लगता था वही हम उसमें लेते थे।
0: तो उस वक्त जो म्यूजिक आप लेते थे टेप पे होता था कि ये ग्रामोफोन वगैरह पे?
1: टेप पर होता था
0: जी,
1: टेप पर होता था, ग्रामोफोन हमसे पहले का था, हमसे पहले जो था वो स्टूडियो 11 एक था, अब भी है वो स्टूडियो, अब उस पर डबिंग होती है, वो स्टूडियो होता था, ड्रामा स्टूडियो में हो रहा, उस स्टूडियो 11 के अंदर हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, इफेक्ट लेके बैठे हुए हैं, कंट्रोल ड्रामे की जो आवाज है वो उस स्टूडियो में सुनाई दे रही है, वहां से वहां इफेक्ट दे रहे हैं, जब उनको स्क्रिप्ट उनके पास दिया वो वहां से इफेक्ट दे रहे हैं, फिर महाभारत हो रहा है जैसे या रामायण हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी ड्रामे हो रहे हैं इफेक्ट वहां दे, तो उस स्टूडियो का नाम ही इफेक्ट स्टूडियो रख दिया गया था
0: अच्छा अच्छा,
1: इफेक्ट स्टूडियो है ना, रामचर इधर बूथ पे होता था ड्रामे के ऊपर और इफेक्ट वहां से प्रिवेक होते थे और कंट्रोल रूम इसको कलेक्ट करता था।
0: सरफराज साहब, रेडियो के हवाले से जैसे हम एक तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं हम लोग, दूसरा यह है कि जब बाहर जाते हैं, बाहर कोई फंक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और वो वक्त था जिसमें आप यहाँ सर्विस में थे कि बाहर जाके रिकॉर्डिंग्स भी बहुत हुआ करती थी
1: जी,
0: तो कोई ऐसा वाक्या जो अपने वक्त का आपको लगता है कि हम रेडियो के हवाले से लोगों तक पहुंचाया जाए?
1: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 6 साल तकरीबात थी
0: जी,
1: और हम पूरी टीम लेकर पहुंचे थे, वहाँ 4-5 दिन का प्रोग्राम था
0: जी,
1: इंजीनियर भी थे हमारे साथ।
0: अब आपके सामने को बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली के स्टूडियो से,
1: वहाँ पर हमारे सामने एक मसला आ गया
0: जी,
1: हम रोजाना दिन में रिकॉर्डिंग करते थे, शाम को एडिटिंग करके कैप्सूल बनाते थे और उसको हाई पावर ट्रांसमीटर जो अलीगढ़ से 17-18 किलोमीटर दूर था वो हमारी वैन का ड्राइवर लेके जाता था, वहां देता था, वहां से प्लेबैक होता था यहाँ दिल्ली में। एक दिन वो वैन जो खराब हो गई, अब कोई रास्ता नहीं था कि हम किस तरह से इसको वो करें, प्रोग्राम हो रहा था कैनेडी हॉल में, उसके बराबर में टेलीफोन का एक पोल लगा हुआ था
0: जी,
1: तो हमने एक साइकिल उस पोल के साथ लगाई, उसकी गद्दी पर खड़े हुए, टेप रिकॉर्डर कंधे पे रखा, उसको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया और वो दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ,
0: मतलब
1: है ना कि शो मस्ट गो ऑन।
0: यस, और ये कहते हैं ना कि रेडियो हो, टेलीविजन हो, ये जितने भी मास मीडिया के हैं वहाँ पे शो रुकना नहीं चाहिए, और आपको वक्त के हिसाब से करना है,
1: बिल्कुल करना पड़ता है।
0: अब ये बताइए कि जो नई नस्ल हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है
1: जी,
0: कहते हैं कि जो टाइम की पाबंदी
1: जी

0: किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है,
1: जी है।
0: लेकिन नशियात में तो और उससे भी ज्यादा है
1: जी। असल में क्या है
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: रेडियो की मुलाजमत दूसरे इदारों की मुलाजमत से बहुत मुख्तलिफ है
0: जी।
1: यहाँ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो और जगह नहीं करना पड़ता
0: जी।
1: यहाँ सबसे पहले वक्त की पाबंदी और जुनून, आपने जुनून होना चाहिए काम करने का, कि हमको काम करना है किस तरह करना है ना। बगैर जुनून के, बगैर जोश के, बगैर पूरी तवज्जो के साथ आपको उसको प्रोग्राम को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोग्राम ऐसा हो जो सबके मतलब का हो।
0: मतलब कोई प्रोग्राम किसी भी तबके को कहीं ना कहीं परेशान ना करे, ऐसा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए,
1: परेशान ना करे।
0: चलिए हम आपको फिर दोबारा ले सकते यादों में। आप यहाँ पर कितना वक्त देते थे? 24 घंटे का दिन होता है और कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग ऐसी है अगर आप इससे मोहब्बत कर बैठे तो 24 घंटे यही निकल जाते हैं स्टूडियो में।
1: शुरू में ही मैं ऑल इंडिया रेडियो 8 बजे पहुंचता था,
0: टाइमिंग की एकदम पाबंदी जो थी,
1: 8 बजे मैं पहुंच जाता था ऑल इंडिया रेडियो और अपना काम संभाल लेता था। अब वो काम 5 बजे तक खत्म हो, 7 बजे तक खत्म हो, 9 बजे तक खत्म हो या 12 बजे तक खत्म हो, मैं उस वक्त तक नहीं हिलता था जबकि वो प्रोग्राम मेरा कम्प्लीट ना हो जाए।
0: अच्छा ये बताइए कि उस वक्त आपके जो सीनियर्स थे उनका तो आपने जिक्र किया, आपके साथियों में कौन थे जो जिस तरह से आप एक जोश के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो इस प्रोग्राम बनाते थे, उस वक्त आपके साथियों में कौन कौन?
1: सबसे पहले नाम मैं फरहत हुसैन साहब का लेना चाहूंगा
0: जी।
1: फरहत हुसैन उर्दू सर्विस से शुरू होते ही प्रेस कोऑर्डिनेशन और उनके बहन, मैं उनको सपोर्ट करता था, मैं उनको हेल्प करता था, असिस्टेंट था मैं उनका, वो क्या करता था तो अपने काम में बड़े माहिर। उनका आलम यह था कि ग्रामफोन रिकॉर्ड चल रहा है, उन्हें कुछ बोलना है बीच में तो उससे 2 उंगली रखते थे, रिकॉर्ड वहीं रुक जाता था बगैर स्क्रैच के। वो फेडर अपना ऑन करके माइक का बोल कर फेडर बंद किया, हाथ उठा लिया, बगैर स्क्रैच के वो टेप अपने उसी स्पीड पे चलने लगता था, टेप नहीं रिकॉर्ड। वो इस तरह का काम करते थे वो। उन्होंने इको चैनल हमारे यहाँ नहीं था, वो नहीं था,
0: ड्रामा
1: करना उसे इको चाहिए,
0: कंसोल में नहीं होता।
1: वो उन्होंने टेक्निक सिखाई, एक और मेरी टेक्निक है सुपर इम्पोज करने की, पेंसिल लगा के है ना, वो उन्होंने सिखाई, ऐसी बहुत सी चीजें सिखाई, मेरा दिल लगता था उनके साथ।
0: टेप पे रिकॉर्डिंग करते थे वो, हमने भी वो देखा जब टेप रिकॉर्डिंग होती थी और कई बार तो टेप को काटना भी पड़ता था, तो वो किस लिए काटना पड़ता था सरदार साहब? क्योंकि उस वक्त तो मुझे लगता है कि एडिटिंग में या कहीं टेप में कुछ, क्योंकि वो मैग्नेटिक टेप हुआ करते
1: तो वो टेप खराब है इसलिए काटते थे
0: जी,
1: या वो रिकॉर्डिंग सही नहीं आई है उस जगह पर। एक और बात है मैं आपको सुना दूँ, बड़ा दिलचस्प था। सलाम मछली शहरी स्पीकर बोर्ड देखते थे, लखनऊ से कलाम आया किसी का तो फरहत हुसैन से कहने लगे कि भाई ये देखिए मेरा जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो तो गायब हो गया, छुट्टी पर है, मुझे सुनना रात का ब्रॉडकास्ट है क्या होगा। तो फरहत हुसैन ने कहा कि कंट्रोल रूम में जाइए CRR में, कोई ना कोई इंजीनियर आपको टेप लगा देगा, आप सुन लीजिएगा। चले गए, सलाम मछली शहरी की बात कर रहा हूँ मैं
0: जी,
1: वहां जाकर इंजीनियर से कह दिया, उसने प्लेबैक किया, ये सुने वो जो 10 मिनट का था कलाम शहरी वो खत्म हो गया। उन्होंने उधर तो देखा उस इंजीनियर को, इंजीनियर नजर नहीं आया, तो उन्होंने टेप पे फॉरवर्ड पे उंगली मार दी, वो बहुत तेज हो गया, घबरा गया, उन्होंने रिवाइंड पे उंगली मार दी,
0: टूट गई टेप
1: है, तो वो टेप जो है दोनों स्पूल उलझ के टूट गया
0: जी।
1: उसके एक इस स्पूल में, एक इस स्पूल में और एक टुकड़ा 2 फुट का जमीन पे गिर गया। उन्होंने जमीन से टुकड़ा उठाया, जेब में रखा और हाथते कांपते दोनों चीजों को लेके पहुंचे भरत के पास, देखो मेरा मेरी तो नौकरी चली जाएगी, रात का ब्रॉडकास्ट है, ये टूट गया। तो भरत हुसैन से मैं बराबर में खड़ा था, मैं कहने लगे सरफराज भाई जाके टेप जोड़ रही है
0: जी,
1: ये मेरे साथ आए, मैंने टेप जोड़ा, जब उसे प्ले बैक किया तो एब्रप्ट, मैंने कहा सलाम भाई ये तो बड़ा एब्रप्ट है, वो जो हो करके उन्होंने जेब से
0: बाकी हिस्सा। हमने बहुत सारी यादों के झरोके से आपसे बहुत सारी चीजें निकलवाई और हम देख पाए कि जो आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, और हम दुआ भी करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से मास मीडिया में काम करते रहें। और जैसे हम आपको बताए कि शुरुआत में कि हम 90 साल आकाशवाणी के मना रहे हैं और उसमें से 90 साल से मैं जो आधे से ज्यादा आपका तजुर्बा रहा है रेडियो में करीब 50 साल का, तो हमारे सामने को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा रेडियो में उर्दू सर्विस किस तरह से शुरू हुई।

आशा के फैन बनाकर आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में नगमा निगाते समीर मौसीकार नदीम शर्वन। और समझ लीजिए सुनिए प्रोग्राम के लिए पेशकश महमूद रफी और आशा भोसले को फिल्म है धर्मकांटा।

है, खुले खुलकार क्यों बेदार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना दे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हथी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हथी की कीमत क्या है ये

बड़ा नजराना यार के हंसते ही

राह में हो जाएंगे आज तो है।

दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म पे नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम शरवन की मौसीकी से जय नगमा सुनिए। फिल्म है दिल का क्या कसूर।

बाद में तू इक रोज पछताएगी।

तू नजर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा जा, पर देख तू

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका बाज़ाब्ता तौर पर शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ऑकलैंड हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने के लिए खुद पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे के रनवे पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबालिया भी दिया गया, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे भी मौजूद थे। भारत ने महाज़राई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और इसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती, इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, इज़ा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया। महाज़राई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीकशुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि यहां अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली के बहुत से इलाकों में आज सुबह से ही बहुत हल्की से हल्की बारिश हो रही है। महकमे ने कौमी राजधानी में आज हल्के से औसत दर्जे की बारिश के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर ने मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले यानी मकानात की फहरिस्त साजी का अमल 100% डिजिटल डाटा जमा करने के साथ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। एक माह तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि इस साल नवंबर के आखिर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जो 2006 के बाद से पहले इंतखाबात होंगे। सदर अब्बास ने एक सदारती फरमान जारी करते हुए 28 नवंबर 2026 बरोज हफ्ता को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है। ये इंतखाबात यरूशलम, मगरबी किनारे और गजा समेत तमाम फिलिस्तीनी इलाकों में होंगे। सदारती फरमान में कहा गया है कि इंतखाबात का मकसद जमहूरी निजाम को मजबूत बनाना और फिलिस्तीन में इंतखाबी अमल को मुकम्मल करना है। ईरान पर अमरीका के हालिया हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू को खलीज खत्ते में अमरीका की फौजी सरगर्मियों से आगाह किया। इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल रात दोबारा टेलीफोन पर गुफ्तगु हुई, जिसमें अमरीका और इसराइल के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी तआवुन बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। दूसरी जानब ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC ने दावा किया है कि उसने शुमाली उर्दुन में वाकई अमरीकी अल अजरक फजाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान के मुताबिक यह हमला तेहरान पर हाली अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुशाहरा किया और 60वीं और 66वीं मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। इस तरह फ्रांस तारीख में पहली मर्तबा लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इधर आज रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज उस वक्त तारीख रकम करेगी जब वो लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाने वाला खवातीन क्रिकेट का ये अब तक का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मैच को यादगार बनाना चाहेगा। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ये मैच खेल रही है। टीम को इस मैच की तैयारी के लिए काफी वक्त मिला है। ये इंग्लैंड और भारत खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान 16वां टेस्ट मैच होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियाई तआवुन के माहदे को अमली जामा पहनाने से इत्तेफाक किया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बरामद कर सकेगा। भारत में अक़वामे मुत्तहिदा

0: ए ऑल इंडिया रेडियो दास राय की प्रोग्राम है। हरजीत कौर दी तुहा को सारा को राम राम। तुसा सारा ठीक ठाक हो सो ना? तब वाला प्रोग्राम दी शुरुआत करें दे हाँ। आज कुछ गाला असि तुहा को पहला दरख्तां दी अहमियत बारे दसना चाहते हाँ। अज असा जो साह लेंदे पए हाँ ओ दरख्तां दी बदौलत ही है। दरखत कुदरत वालों मिला एक इंच दा तोहफा है जिसकी साको कदर करनी चाहिदी है, पर इस तो उलट थींदा पिया है। असा जंगल ते जंगल कटी हुंदे पए हाँ, धरती बंजर थी वे सी। जगण दरखत न होवणगे ता ऑक्सीजन किंज मिल सी, ते ऑक्सीजन बगैर जिंदगी कहनी। तुहा को पता हो सी पिपल दा दरखत 24 घंटे ऑक्सीजन छड़ेंदा है। केडा वधिया दरखत है, साको अजिहे दरखत लावणे चाहिदे हिन। दरखत साडे वास्ते खाने ते पानी आले कार महत्व रखेंदे हिन। दरखत साडे कीते बारिश गिनावदे हिन, नाल ही हड़ तों भी बचावदे हिन। दरखत साकू गर्मी च ठंडी ते नाल ही साफ वा देंदे हिन, जाने के प्रदूषण को काबू करेंदे हिन। आज वाच प्रदूषण बहु वध गया है, जिस कारण साह लेवना औखा थी गया है। प्रदूषण नाल बीमारियां बहु वध गया हिन, ते जे सेहत निरोई रखनी है ता प्रदूषण ते काबू पोना पैसी। इंदे वास्ते वध तों वध दरखत लावने चाहिदे हिन। जे असा लगातार दरखत कटी हुए गए ता इस नाल ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी नाल वधेंदा पिया है। आज 46 डिग्री तापमान ते केडी गर्मी लग सी, ए तुसा अंदाजा लगा सकसो। या करके दरखत लावने बहु जरूरी हिन। वला फल देवन आले दरख्तां दा ता लावना बहु चंगा है। फल भी खावो, छां भी लेवो, ठंडी वा भी, ऑक्सीजन भी, फर्नीचर की ते लकड़ी भी, दवाइया भी, ते बड़ा बहु कुछ। साकू उथाई दरखत जरूरी आवने चाहिदे हिन। जिथाई दरखत कटी वेंदे केडा चंगा होवे कि हर व्यक्ति अपने घर विच जा अपने आसे पासे हिक हिक दरखत जरूर लावे। अपने जन्म दिन ते ही हिक दरखत ला देवो ता उसकी देखभाल कर उको वड़ा करेउ, ए हिक पुण दा वी काम है। साकू इस गाल की ते गंभीरता नाल सोचना पोसी कि दरखत लावने ही हिन। दरखत लावो, जिंदगी बचावो। ते हुण सुणदे हां इक वार्ता, कोणार्क सूर्य मंदिर। वार्ताकार हिन सीमा शर्मा।
1: सुनन आले सारे भेण बिरावां को सीमा शर्मा दी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल ते आदाब। आज मैं वला हाजिर हां आप सारियां दी खिदमत विच अपनी ये वार्ता गिन के जिन्ना सिर लेखे साडी राष्ट्रीय धरोहर कोणार्क मंदिर। साडे मुल्क भारत दा इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, ते भारत दे इतिहास विच क्या पता कितने इंचे राज लुके हुए हैं जेड़े अज तोनी पूरे तरीके नाल उजागर कह नहीं सी सके, क्योंकि साडे मुल्क विच बहुत सारी पुरानी कथावां हैं जो साडे मुल्क को होर ज्यादा दिलचस्प बना रही हैं। भारतीय इतिहास

ए है आबिदा परवीन दा कायाकीत। समा बया कैनी सिराकी प्रोग्राम इथई खत्म थींदा है। अगले प्रोग्राम चुवाल मिलसा। हुन हरजीत कौर को देवो इचासत।

سامعین، دوسری سماعت فرمارے تھی سرائی کے پروگرام جھوک ماہی دی.

0: अरे देखना कुड़े कमला, अच्छा देखा ना कोई सिगरेट पी गए तो ना भी है ना मजा। ऐसा मतलब है कोई चोर ऐसे कितना ही चीर खड़ा गया। हाय हाय नहीं ऐ देख ऐ देख कुछ पीटिया है बीड़ियों दे टोटे। हाय हाय ते फिर आता है ए बीड़ियों दा अंधा बंदर ते महान नवीन कौन माचस भी। हाय हाय हाय
1: बे जी ये हो तो मैं कहनी हूं कि साडे घर भला बीड़ियों दा की काम।
0: कुड़िए जमाना गर्कन ते आ गया, तेरा मकान अगले पासे बन रहा है ते अगले ने एक खुला राह वेख के जुगत सोची होनी है।
1: है
0: चलो बाल बाल बच गए, कोई नुकसान तो नहीं होया ना।
1: बेबे जी नुकसान तो कोई नहीं होया, पर मैं सहनू नहीं पैनू रो रही हूं। पर एक घर दियां केड़ियां सारियां चीजां गिणियां मिलियां हुंदियां ने। अच एक चोर आया कल चार आउणगे।
0: है कन्या रानी नहीं आई ए चोर दे पैरां दे निशान। ओए होए नी तू अंज कल अपने घर वाले ने कह कि पुलिस विच रिपोर्ट कर दे।
1: आई होए ना
0: जाने उंजी अज देखन आया होवे ते फिर वेला ताके कोई वड्डा हाथ मारे हड्डा।
1: बेबे जी पुलिस नु रिपोर्ट करके की लभना है भला? पुलिस तां आप चोरां डाकू अगे हर हर पे करदी है। ए रोज अखबारां विच नहीं पढ़दे कि पुलिस मुंह तकदी रह गई ते मुजरम फरार हो गए, पुलिस ने की करना है? सोहा देखे
0: सच कहनी है कुड़े, बिलकुल सच कहनी। चोर दा पता ते पुलिस ने ला नहीं सकना, ऐनी दो दिहाड़ी तोनू थाने तलब कर दी फिर पुलिस। अच्छा मैं चलनी कमला, चुकन्नी हो के नहीं पुत्र। हाय हाय सुखना घर वाला किन्ने बजे आंदा है पुत्र?
1: बेबे जी शामी 5 बजे तो बाद ही आंदे ने।
0: अंदरों कुंडी मार के बैठी, वाकफ ताकफ दी आवाज बगैर बिल्कुल कुंडी ना खोली। अच्छा चंगा तो मैं चलनी। हे राम हे राम हे राम।
1: मैं भी बारी कहा कि बंदे हाले इमारत ना ला, साडा इस नवे कमरे बनाने खुणो भला की थुड़िया होया सी, पर ये नहीं मनता। मैं कलम कर ली उपरों राज मिस्त्री, कदी पठे वालिया ना मुंशी आ गया, कदी रेत बजरी वाले ट्रक आ गए। मैं किधर जावा ते की करा ते उपरों।
2: भैन कमला की कर दी है?
3: हाय मैं सुनिया है तेरे घर चोर आ गए सी।
1: ते रब जाने चोर सन जा साध, पर शांता ए बीड़िया दा अद्धा बंडल ते माचिस इस आले विच पिया सी।
3: हाय मैं मर जा, एदा मतलब ए होया चोर बड़े आराम नाल इत्थे काफी चिर बैठा रहा।
1: रब दिया रब ही जाने, पर सड़िया हुई बीड़िया दे टुकड़े भी पए ने, पता नहीं मर जाना किन्ना चिर इत्थे बैठा सड़िया रहा। मैं तो सवेरे उठ के देखिया ते चंदरिया बीड़िया दा बंडल ते माचिस पई सी।
3: कमला भैन मेरी राज मजूर तां तेरे लगे ही होए ने, तू इंज कर ए ए बरांडा है ना तेरा, इधरों भी इधरों भी लोहे दियां करीलां नाल टक दे, कैंची वाले लोहे दे दरवाजे इधर देखे चला, राती एक ताला मार दिता कर, आराम ना बेफिक्री हो गई डब्बे दा डब्बा।
1: हो तो शांता तेरी सलाह चंगी है, पर इन्हां ने दफ्तरों 10,000 कर्जा लेके ए कमरा बनाउण दा काम छो लिया, जिसदा ए भी कंप्लीट नहीं होना। डुब्बी दत्ता जसा ना आया, ग्रिल ते 5-6 हजार ते लगेगा ही ना।
3: आहो ओ ता लगू ही, आ डॉक्टर ने कैरी ग्रिल लवाई सी 5 हजार लग गया। रुपये दी अजकल कीमत की है कमला, लोया ते कहंदा ए हाथ ना लाओ। आ मैं चलदी आ, बिट्टू दे स्कूलों आन दा वेला हो गया है। कमला समय बड़े भेड़े ने, हुशियार होके मर्द बन के रिया कर चंगा।
1: हुण मैं की करा, चोर दी ते डहसी बड़ी हुंदी है, अज मर जाना इथो तक आया कल अंदर आवड़े ते मैं की कर लेना है भला।
2: नी बीड़िया दे दो बंडल ते दो माचिस लभिया ही
1: ना। नी शीला अद्धा बंडल ते आया एक माचिस
2: ला कर लो गल।
1: बेबे ता दस के गई है कि दो बंडल बीड़िया ते दो माचिस लभिया ने, रब जाने मर जाना खड़ा खड़ा डूढ़ बंडल पी गया होगा।
2: चोरिया ते अजकल बहुत होने लग पई ने कमला।

साला पुराना एक गीत सुरेंद्र कौर दी आवाज अज उन्ना ही सोना लगता है तो उन्ना ही गाया जाता है तो इस गीत दे बोलां ते उन्ना ही वधिया नाच कीता जाता है। कहिंदे ने संगीत कदे पुराना नहीं हुंदा ते

आवाज ने ते इस गीत बोला ने ए साबत बखूबी किया है। कुछ अजिह आवाजा ने जो बहुत साल पहले सुनिया गई बचपन दे विच ते आज आन वाला बचपन भी ओही आवाजा नू उसे तरह उसका आनंद ले रहा। कुछ एहो जिया आवाजा ने पम्मी बाई सरदूल सिकंदर होरां दी जिन्हां विचों कुछ गीत अज थोड़ी नजर करांगे। ते पम्मी बाई दी आवाज च सुन लैने आ एक गीत।

0: संगीत पंच थे, डीजे लगा होगा उथे कोई ना कोई की बहुत सारे पंजाबी गीता दी पंजाबी पीट ते भंगड़े जरूर पेंदे मिलणगे। यही तो खासियत है पंजाबी विरसे दी, पंजाबी पगड़े दी, पंजाबी गिद्दे दी। सो अज असी इंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीत पम्मी भाई तो बाद एक सोहना जिहा गीत ज्योति कांगड़ी दी आवाज विच भी हो जाए।
1: कोई मैनू भी आपका गीत सुना दो
2: ना।

I'm not going to be able to do that.

Sanuya,

Ich bin der Kanzler, du Marie.

0: सुनिया जी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: Surfi Rosi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम राम। शीतल बहन और मैं शाहिद लेकर हाजिर हैं आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें लोकगीतों का ये महासंगम भी है और आपको बहुत सारी जानकारियां भी देंगे, सुझाव देंगे, सब्जी और मिलेट्स की बात भी करेंगे।
1: जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत तो आपने कर दी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फल सब्जी और मिलेट्स की बात करेंगे तो श्रोताओं के लिए सबसे पहले यही बात कि जो मौसम की सब्जी है सिर्फ उन्हीं का सेवन करें, क्योंकि प्रकृति ने हमें वही सब्जियां और वही फल दिए हैं जो हमारे मौसम के अनुसार होते हैं। आप देखिए गर्मियां होंगी तो हमें ऐसी सब्जियां मिलेंगी जिसमें ज्यादा पानी हो, हमारे शरीर में पानी मिल सके, तोरई हो, घिया हो, इनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फल भी ऐसे ही मिलते हैं। तो सबसे जरूरी है कुछ ना करें आप, बाहर का कुछ भी ऐसा ना करें कि हमें अलग से कुछ सलाह लेनी है, कुछ करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौसम की सब्जी और फलों का सेवन करें।
0: शीतल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ये सब्जी फल जीव जंतु ये जितने जितना भी ये कुदरत का ये पूरा जो करिश्मा है ना, ये करोड़ों साल का एक इवोल्यूशन का नतीजा है
1: जी।
0: और कुदरत ने हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बड़े करीने से उसको जो है कि तय किया है,
1: बिल्कुल सजा के दिया है। हाँ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
0: मौसम में कब खाना है क्या नहीं खाना है कैसे करना है, यहाँ के लोगों को क्या खाना है, रेगिस्तान वालों को क्या खाना है, पहाड़ में क्या खाना है, वो सारी चीजें बता रखी है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो फल सब्जियां हैं इनको बड़ा चुनिंदा तरीके से जो कुदरत ने दिया है उन्हीं को इस्तेमाल करें।
1: जी बिल्कुल। और श्रोताओं जैसे कि आज के दौर में बदलती जीवन शैली जो है और उसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप देखते हैं आजकल शुगर बहुत आम हो गया है, मोटापा बहुत आम हो गया है, और आजकल तो आप देखेंगे कि हृदय की परेशानी जो आप देख रहे हैं, अटैक आप आए दिन सुनिए कि बहुत चलते फिरते इंसान गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई या कुछ, तो ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। अगर ऐसे ही यदि हम अपने दैनिक भोजन में फल सब्जी और मोटे सब्जियों के साथ मोटे अनाज को अगर शामिल कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा।
0: सही कहा शीतल, ये जो मोटे अनाज जो है ना इनका जब चलन खत्म हुआ है तभी से ये मोटापा, हाइपरटेंशन, बीपी ना जो है कि शुगर, इस तरह के जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं तो उसके बाद ही आए हैं, इसलिए मिलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत
1: जरूरी है। शाहिद भाई बातें हम मिलेट्स पे और भी अपने श्रोताओं से करेंगे, अभी फिलहाल अभी अपने श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं अशोक कुमार की आवाज में ये रागिनी।

बाबा मोरिया का सवा।

Baba Moriya Kasava, Mai Mura Sarati.

के भैया बिजिया मिले, गेहुआ के बलिया, गेहुआ के बलिया दे लसमुख के संगे सवा माई मोर धरती, बाबा मोरिया का सवा माई मोर धरती, बाबा मोरिया का सवा।

0: மழை மாறுதற்கே பாபா கசுவா பாகிஸ்தான் கி எக் பூரே ஜீவன் ஷைலி கோ பூரே உஸ்கா கல்ச்சர் கோ பதல் கர்னே வாலா எக் ரோக் கீத் அசோக் குமார் கி ஆவாஸ் மே ஆப்னே சுனா.
1: और हम बात कर रहे थे फल सब्जी और मिलेट
0: की. मिलेट्स दरअसल मोटे वो अनाज जो कि पोषण से समृद्ध है, जिनमें तमाम तरह के मिनरल्स हैं. वो सारे मिनरल कमोबेश जो एक व्यक्ति को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो सारी चीजें मिलेट्स में मिलते हैं. मिलेट्स है क्या, वो ज्वार है,
1: ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांभर, बहुत सारी चीजें हैं जो मोटा अनाज.
0: बिल्कुल, ये वो मोटे अनाज है जो अब कम पैदा किए जाते हैं. पहले जो है इन्हीं की पैदावार ज्यादा थी, यही खाया जाता था, यही बोया जाता था, और उसका असर ये था कि जीवन हमारा जो है ना वो बड़ा समृद्धशाली था. रोगों से मुक्ति थी. रोग कभी कभार लोग देह के बीमार पड़ते थे, और अक्सर ये देखने को मिलता था कि लोग लंबी आयु, दीर्घ आयु जीते थे.
1: जी, आप देखेंगे अक्सर पहले क्या होता था, पहले लोगों की आयु मतलब 90-95 साल बहुत आम होती थी. लोग 100 साल पार कर जाते थे, क्योंकि क्या होता है मोटे अनाज में श्रोताओं तत्व जो होते हैं भरपूर होते हैं, चाहे वो फाइबर हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, सभी चीज मिल जाती है. और ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि घर में खाए जाते हैं या इनकी रोटी मजबूरन बनाई जाती है. आप देखेंगे मिलेट्स के तो बहुत सारी चीजें, चिप्स है, मतलब बाजार में जो आप चिप्स और तरह तरह की चीजें जो देखते हैं ना, अलग अलग टेस्ट की, कि लोग आकर्षित होते हैं खाने के लिए, आपको मिलेट्स की भी भरपूर मात्रा में मिलेगी.
0: खीर बना लो, रोटी बना लो.

0: बना लो हर तरीके से। अच्छा पहले ये खाया भी जाता था, वैसे इस्तेमाल होता था, इसकी वजह से चूंकि ये एक संतुलित पोषण है
1: जी,
0: संतुलित पोषण लेना बहुत जरूरी है, वो शायद आज के लोग नहीं ले पा रहे हैं अपनी जीवन शैली के नाते। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मुहैया नहीं है, कम पैदा है लेकिन मिल रही है, और अभी तो जो है कि सरकार ने इस पे खासा जोर दिया है तो इसकी पैदावार भी बढ़ रही है। तो बेहतर ये होगा कि हमारे भाई बहन जो है वो चाहे शहरों के हों चाहे गांवों के हों मिलेट्स पे ध्यान दें, ये उनकी जीवन शैली को और उनकी दिनचर्या को बदल के ना, जैसे कि वो खुद बदलेंगे तो चीजें बदलेंगी और इससे जुड़ा हुआ जो उनके अंदर एक कहने की कई तरह के रोग हैं कई तरह की परेशानियां हैं वो शरीर की सारी चीजों को सुचारू कर देगा। और उससे फायदा ये होगा कि कम से कम जो है कि मधुमेह है बीपी है और इस तरह की जो जीवन शैली वाली बीमारियां हैं उनसे धीरे धीरे निजात मिलेगी।
1: जी बिल्कुल, और क्या होता है मोटा अनाज बहुत जल्दी पच जाता है और जो चीज जल्दी पच जाती है वो आपको कभी बीमार नहीं करती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं भूलन त्यागी की आवाज में ये रागनी।

0: ग्रामीण भाइयों बहनों, हमारे किसान बहन भाई जो है, ये उनके लिए खास प्रोग्राम है। और हम बता दें कि ये अब जो मौसम है ना, मानसून का, जैसा आप शीतल बता रही थी, ये कैच द रेन का मौसम है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये हकीकत में एक नारा भी है जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और हकीकत में ये पूरा जो नारा है वो ये है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स।
1: जी,
0: तो यानी जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो बारिश के बूंदों को, पानी को सुरक्षित बचाइए, संचय करिए उसका। इसका मकसद ये है कि ये जो धरती है, ये जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उनको रिचार्ज करिए।
1: जी बिल्कुल, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आने वाले समय में पानी की बहुत ही दिक्कत होगी। और आप जानते भी हैं कि जल है तो जीवन है।
0: बिल्कुल,
1: और अब बात हो रही है जल की, और बात ना हो मछली की तो बहुत ही अन्याय होगा।
0: अरे बिल्कुल, आपने याद दिला दिया, आज तो नेशनल फिश डे है।
1: जी बिल्कुल, और जब हम पानी की बात करेंगे तो मछली को क्यों ना हम याद करें। हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली दिवस मनाते हैं, और चूंकि मछली बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है और उसमें बहुत पौष्टिक होती है, कई राज्यों में ये मुख्य आहार के तौर पे भी यूज किया जाता है।
0: वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए ये आय का अतिरिक्त स्रोत है। और बड़ी चीज ये है ना कि हमारे कल्चर में इसको जो है कि खाद्य से अलग जो है ना, इसकी जो कहें कि परंपराओं से जुड़ी जो इसका महत्व रहा है, ठीक है, इसको जो है कि मछली हो और चाहे जो है कि कछुआ हो, इसका जो है कि अलग ही महत्व है।
1: जी बिल्कुल, आज देश के वैज्ञानिक, तकनीकों, सरकारी योजनाओं और किसानों की बढ़ती रुचि के कारण जो मछली का उत्पादन है ना, बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि इससे क्या है, हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। वो खेती तो कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक उसमें ये मत्स्य पालन भी बहुत ही मुख्य आय का स्रोत है। तो चलिए,
0: हम जल संचय भी करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं, तो इससे जो है हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों की, खासतौर से किसान भाइयों बहनों की
1: जी
0: आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगा,
1: और उनके जो व्यक्ति स्तर है, उनका जो रहन सहन है, वो बहुत सुधार होगा।
0: जी हाँ, तो आइए अब आगे चलते हैं और आपका कराते हैं मनोरंजन।

0: छाया बैठ के जीरा जी हो जा, ठंडी ठंडी देते छाया बैठ के जी हो जा राजी, पंछी गण भी करे बसेरा हवा मिले बिल्कुल ताजी हवा मिले।
1: शोभा सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज में ये रागनी पर्यावरण की करो सुरक्षा। और यकीनन जो ये मौसम है और जो मानसून का मौसम चल रहा है तो पर्यावरण को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पौधा आप जरूर, जैसे कि आजकल हमारी मुहिम चल रही है हमारे सरकार की तरफ से छिड़ी हुई है कि एक पौधा माँ के नाम, तो एक पौधा आप भी जरूर अपने किसी अच्छे दिन के लिए, जन्मदिन पे, किसी भी अच्छे मौके पे एक पौधा लगाएं, क्योंकि इस मौसम में अगर आप पौधा लगाएंगे तो बहुत जल्दी पनपता है और बढ़ता है, क्योंकि इस समय जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और जड़ें बहुत जल्दी जम जाती हैं जमीन में और वो जल्दी उग जाता है। तो इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं गजल और कवाली, कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत सी गजलें।
1: एक तो यह कि भूपेंद्र के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इंफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रवैया मछेरा और उसकी रम्मी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुम्मन। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका

0: श्रोता, अभी आपने आनंद लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए बस अब से कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने

0: सीएम के स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की। यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर बढ़ाई सख्ती। यातायात नियम तोड़ने पर इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए। और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास और जनसेवा के संकल्प को नई शक्ति मिली है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामूहिक प्रयासों से राजधानी के विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पार्षदों ने यह निर्णय लिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।
1: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सभी मिलकर राजधानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं और विकास कार्यों को नई दिशा दे सकते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा परिसर में संस्कृत महाकाव्य मंगल महर्षि चरितम का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि भारत के सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन का प्रत्येक प्रयास देश के भविष्य में किया गया निवेश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषाओं में से एक है। इसकी तार्किक व्याकरणिक संरचना आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर में भी प्रासंगिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। विश्व बैंक और पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 8,300 करोड़ रुपए का 7 वर्षीय कार्यक्रम राजधानी में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम की 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% योगदान दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर गति और दृढ़ संकल्प के साथ सतत विकास को गति दे रहा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री जाधव ने 70 लाख से अधिक स्वदेशी और जलवायु प्रतिरोधी वृक्षों के प्रस्तावित वृक्षारोपण, 70 से अधिक जल निकायों के विकास और लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने की सराहना की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 सीएमश्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल और एनजीओ एहसास के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुए इस समझौते के अंतर्गत आईजीएल अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर पहल के माध्यम से परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट।
2: यातायात पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए गए हैं, जबकि रेड लाइट और ओवर स्पीड उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से 17,21,000 से अधिक ई चालान जारी किए गए हैं। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों में 2,187 एफआईआर भी दर्ज की गई है। राजधानी में ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए 8 प्रमुख सड़क कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बना दिया गया है। अनावश्यक ट्रैफिक सिग्नल हटाने, यू टर्न की सुविधा देने और चौराहों को फिर से डिजाइन करने जैसे उपायों से इन रास्तों पर ट्रैफिक का प्रभाव बेहतर हुआ है। यातायात जाम को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट, आनंद विहार, आश्रम चौक, मजनू का टीला और अन्य प्रमुख स्थानों पर आधारभूत ढांचे में सुधार किए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हुई है। यातायात पुलिस ने कहा है कि इंजीनियरिंग सुधार, आधुनिक तकनीक, प्रभावी परिवर्तन और जनभागीदारी के माध्यम से राजधानी में सुरक्षित और यात्री अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित बनाने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड धारक महिलाओं को ही डीटीसी और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने के अंत तक ही कागजी पिंक टिकट जारी रहेगा। जिन महिलाओं के पास ये पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट लेना होगा। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी करने के रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 15 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली के महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली NCR का महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है। ये मार्ग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट मेहरोली गुरुग्राम रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 148A को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह सड़क दिल्ली गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच अंतर्राज्यीय यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। चांदनी चौक नागरिक मंच ने दिल्ली सरकार द्वारा शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। मंच के महामंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पुरानी दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से ये मांग थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नाम परिवर्तन के साथ ही पुरानी दिल्ली के संरक्षण विकास और रखरखाव के कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नजफगढ़ स्थित गोयला डेयरी संपीड़ित जैव गैस CBG प्लांट की प्रगति की समीक्षा की और पश्चिमी जोन की प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की साइबर सेल ने नकली दवाओं के निर्माण और अंतर्राज्यीय आपूर्ति से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण दिल्ली में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आज दक्षिण जिले की दिशा समिति की बैठक भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव से निपटने के लिए नालों की गाद हटाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। ये वार्षिक महोत्सव अनानास उत्पादकों को उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य व्यवसायों और निर्यात बाजारों से जोड़ने का राज्य का प्रमुख मंच बन गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यापार को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक स्तर पर किसानों की क्षमताओं को नई गति प्रदान करते हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे कई दशकों तक आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे। उन्होंने देश विदेश में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हुए रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है 8:00 ये लीजिए पूरे हुए 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, और इस क्रम में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और उम्मीद करते हैं ये जो गीत हम पिरोकर लाए हैं ये सभी नगमे जो हैं आप सभी को पसंद आएंगे। तो आइए गीत मालिका का आगाज करते हैं नेताजी की आवाज में गाई एक खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम, कार्यक्रम रहा गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध

0: सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति में भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के

0: बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षा और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India, far reaching international.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95 रुपये 32 पैसे

0: प्रबंध हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation and trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves coverage deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand,

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें।

0: लगा सकते हैं।
1: बहुत अच्छा है भैया।
0: दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं। और हर कोई चेहरे पे पढ़ना चाहता है दुख वही, हर कोई चेहरे पे पढ़ना चाहता है दुख वही, और हम उस दुख को अफसाना बना सकते नहीं, और हम उस दुख को अफसाना बना सकते नहीं। मतलब देखें कि हम गमजदा हुए तो तमाशा कहा गया, हम गमजदा हुए तो तमाशा कहा गया, आंसू को सिर्फ पानी का कतरा कहा गया।
1: वाह।
0: हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप।
1: वाह।
0: हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया।
1: वाह वाह वाह।
0: यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया। और कहना
1: अच्छा
0: था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, कहना था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, इतनी सी बात कहने को क्या क्या कहा गया। और माँ बाप खुश हैं, बेटियां काबिल जो हो गईं।
1: वाह।
0: माँ बाप खुश हैं, बेटियां काबिल
1: जो हो गईं।
0: बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया।
1: वाह वाह वाह।
0: बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया। शुक्रिया। रास्ता कठिन है
1: भाई, फिर पढ़।
0: माँ बाप खुश हैं, बेटियां काबिल जो हो गईं। बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया। रास्ता कठिन है हम पे ये जाहिर किए बगैर, रास्ता कठिन है हम पे ये जाहिर किए बगैर, चलना संभल संभल के बस इतना कहा गया। चलना संभल संभल के बस इतना कहा गया। शेर देखें कि देखकर अश्क के इम्कान खुशी होती है,
1: देखकर अश्क के इम्कान खुशी होती है,
0: देखकर अश्क के इम्कान खुशी होती है, वक्त पर आए जो मेहमान
1: खुशी होती,
0: खुशी
1: है।
0: होती है। और कितना डरते हो जमाने की नजर लगने से,
1: वाह,
0: कितना डरते हो जमाने की नजर लगने से, करके देखो कोई ऐलान खुशी, खुशी होती है।
1: वाह।
0: करके देखो कोई ऐलान खुशी होती है। और दुख को अपना लिया घबरा के अकेलेपन से, दुख को अपना लिया घबरा के अकेलेपन से, और फिर आया मुझे ध्यान खुशी होती
1: क्या
0: है।
1: कहने हैं।
0: और फिर आया मुझे ध्यान खुशी होती है। और मैं तुम्हें देख के नाशाद नहीं दोस्त मेरे, मैं तुम्हें देख के नाशाद नहीं दोस्त मेरे, बस इस बात पे हैरान खुशी होती है। बस इस बात पे हैरान खुशी होती है। और बेअसर होती है इस दिल पे हर एक बात मगर, बेअसर होती है इस दिल पे हर एक बात मगर, तुम जो कहते हो मेरी जान खुशी होती है। और शेर देखें कि इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है,
1: इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है,
0: इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है, खुद को साबित करना अब मजबूरी है। और हमने अपनी आंखें जब कासा कर ली,
1: वाह वाह वाह,
0: हमने अपनी आंखें जब कासा कर ली, तब उसने दीदार की दौलत बख्शी, तब उसने दीदार की दौलत बख्शी है। और एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी, एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी, खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है, एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी, खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है, सब किरदार ख्याली हैं इस नाटक के, सब किरदार ख्याली हैं इस नाटक के, लेकिन घटना सोलह आने सच्ची है।
1: वाह वाह वाह।
0: लेकिन घटना सोलह आने सच्ची है। और कुशेर, मेरे नजरिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ, मेरे नजरिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ, कबूल कर लूं जो जैसा कह दे, जो अपनी रखूं तो मैं गलत हूँ। कभी मोहब्बत कभी जरूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा, कभी मोहब्बत कभी जरूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा, किसी घड़ी जो मैं खुद से बातें दो चार कर लूं तो मैं गलत है। असल में ये कि लड़कियों को सही है क्या ये पता नहीं है, है असल में ये कि लड़कियों को सही है क्या ये पता नहीं है, हर एक लड़की ये सोचती है मैं कुछ भी चाहूं तो मैं गलत हूं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: हर एक तराजू में तौल कर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो।
1: वाह।
0: हर एक तराजू में तौल कर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो, जो मैं भी तुमसे तुम्हारे सच का सबूत मांगू तो मैं गलत हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया। आखिरी को शेर है बस, फिर मैं अपनी जगह लेती।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: ये दर्द के झरने हैं ठहरने के नहीं है, ये दर्द के झरने हैं ठहरने के नहीं है, जो जख्म दिए आपने भरने के नहीं है, तुम जाओ कोई और हुनर सीख के।

0: आओ, तुम जाओ कोई और हुनर सीख के आओ, हम दिल पे लगी चोट से मरने के नहीं है।
1: वाह वाह वाह,
0: हम दिल पे लगी चोट से मरने के नहीं है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: और उल्टी नहीं बहती है कभी धार नदी की।
1: क्या कहने,
0: उल्टी नहीं बहती है कभी धार नदी की, अब हम तो यकीन आप पे करने के नहीं है। और दे ही नहीं पाओगे मोहब्बत का बदल तुम, दे ही नहीं पाओगे मोहब्बत का बदल तुम, तुमसे ये मेरे कर्ज उतरने के नहीं है।
1: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब। दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, अब जरूरत के लिए दिल तो लगा सकते नहीं। मोहतरमा माधवी शंकर साहिबा अपनी शायरी से नवाज रही थी। अब माधवी शंकर साहिबा ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस शेर में उस माइक से जाकर एक शायर के तौर पर पढ़ देता हूं। मेरा नाम मुईन शादाब है, यही काफी है। इजाजत चाहता हूं साहब स्टेज से। कुछ शेर जहां जहां से याद आ रहे हैं पढ़ देता हूं। बड़ा मियारी और पुरवकार मुशायरा है, जाहिर है रेडियो की अपनी एक शान होती है और यहां इंतखाब भी करना पड़ता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो अर्ज करता हूं कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। एक नाजुक सा शेर आ गया है, अर्ज करता हूं कि होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसुल, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसुल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार, खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, तू ढूंढता रह जाएगा ये दोस्त निरे यार,
2: निरे यार
1: कि तू ढूंढता रह जाएगा ये दोस्त निरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। एक ताजा मतलब पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ मतलब कि धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। ये धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। कि बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। बहुत शुक्रिया, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। और एक मुहावरे के साथ तोड़फोड़ करने की जसारत की है, लेकिन ठीक है, खूबसूरत तोड़फोड़ है। अर्ज करता हूं कि पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो, पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो, और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया, और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया, धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा मैं जलथल हो गया। एक ताजा गजल के चंद शेर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। शेर मुलाहजा करें कि कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ, कि कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ, कि कहां कहां वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। और ये शेर मैं आकाशवाणी की नजर कर रहा हूं, शेर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके, बहुत शुक्रिया, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, बहुत शुक्रिया, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ। एक गजल का शेर हो गया है, अर्ज करता हूँ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब, अर्ज करता हूँ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, सवादे जिस्म में تحلیل ہو گئے کئی

0: लब बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ, सवादे जिसमें तहलील हो गए कई लब, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। और शायर कितनी मेहनत करता है, पेश करता हूं कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, अर्ज करता हूं कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। ये चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। तो मेरे लिबास पे करता है, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे खत्म करें, मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे खत्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ। कि मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे खत्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। एक गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है,
1: बेदारी ख्वाबों को भारी,
0: अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है, बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। और शेर मुलाहजा करें कि घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। और शेर मुलाहजा करें कि पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, अर्ज करता हूँ इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है, पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है, पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान। बहुत शुक्रिया। पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है, पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, इसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। एक शेर पढ़ रहा हूं, अर्ज करता हूं कि रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है, कि रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। बेदारी ख्वाबों को महंगी पड़ती है, सोता हूं तो रात के लिए पड़ती। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मोहब्बतों सुना आलम खुर्शीद साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं।
2: मतलब देखें गजल का, कि जाने किन जहानों से हर्फों लफ्ज आते हैं,
0: जाने किन जहानों से हर्फों लफ्ज आते हैं,
2: जाने किन जहानों से हर्फों लफ्ज आते हैं, जाने कैसे महफिल में शेर खिलखिलाते हैं।
0: वाह,
2: जाने किन जहानों से हर्फों लफ्ज आते हैं, जाने कैसे महफिल में शेर खिलखिलाते हैं। और खुद ही कब मैं सोता हूँ, खुद ही जागता हूँ कब,
0: खुद ही कब मैं सोता
2: हूँ, खुद ही कब मैं सोता हूँ,
0: खुद ही जागता हूँ कब,
2: खुद ही जागता हूँ कब, ख्वाब ही सुलाते हैं,
0: ख्वाब ही जगाते हैं,
2: ख्वाब ही जगाते हैं।
0: वाह अच्छा है भाई, वाह वाह,
2: खुद ही कब मैं सोता हूँ,
0: खुद ही जागता हूँ कब,
2: खुद ही जागता हूँ कब,
0: ख्वाब ही सुलाते हैं,
2: ख्वाब ही सुलाते हैं, ख्वाब ही जगाते हैं। और रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, तुम भी भूल जाते हो।
0: वाह वाह,
2: रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, तुम भी भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं यार दोस्त अक्सर ही, अब यहाँ पे आते हैं
0: यार दोस्त अक्सर ही,
2: यार दोस्त अक्सर ही, अब कहीं पे मिलने की और जगह बनाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं।

0: यार दोस्त अक्सर ही अब कहीं पे मिलने की और जगह बनाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: और तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम,
1: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम,
0: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम। आईना बनाते थे,
1: आईना बनाते हैं,
0: आईना बनाते हैं।
1: वाह।
0: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम, आईना बनाते थे, आईना बनाते हैं। और ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या,
1: ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या,
0: ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या। हम इधर भी जाते हैं, हम उधर भी जाते हैं, ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या। हम इधर भी जाते हैं, हम उधर भी जाते हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: और सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है।
1: क्या कहने,
0: सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है। जाने वाले जाते हैं, आने वाले आते हैं।
1: वाह वाह।
0: सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है। जाने वाले जाते हैं,
1: आने वाले आते हैं,
0: आने वाले आते हैं।
1: वाह।
0: और कब किसी के आने का इंतजार है आलम,
1: कब किसी के आने का इंतजार,
0: कब किसी के आने का इंतजार है आलम। अब गरीब खाने को हम कहाँ सजाते हैं, कब किसी के आने का इंतजार है आलम। अब गरीब खाने को हम कहाँ सजाते हैं।
1: बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब। और इसी के साथ ये मैं अर्ज कर दूं कि मुशायरा AIR @90 यानी 90 बरस मुकम्मल होने पर यह मुशायरा मुनक्किद किया गया। आप लोग इस तारीखी वाकये का हिस्सा बने। मैं ये दुआ करूंगा कि जब हम 100 बरस मनाएं आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो के, तब भी आप जो प्रोग्राम मुनक्किद उसमें शामिल हो। बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किदा मुशायरे का दूसरा हिस्सा सुन रहे थे। निजामत कर रहे थे जनाब मुईन शादा। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
3: सामीन, अभी आप आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किदा मुशायरे का दूसरा हिस्सा समाप्त फरमा रहे थे। शोरा इकराम थे जनाब मुमताज इकबाल, मोहतरमा माधवी शंकर, जनाब मोइन शादाब और आलम खुर्शीद। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब मोइन शादाब। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। शब के 10:30 हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामिले शाद का। लेकर हाजिर है आपका मेजबान मोहम्मद इमरान। प्यार भरा आदाब कबूल कीजिए।

और जनाब ये हैं गोकुल चौक गंगजला सरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और बुल्की वाली फलना झा। विजय पाटिल, पद्मा बाई पाटिल और चिरंजीवी गणेश्वर पाटिल अब महाराष्ट्र से हमें ईमेल करते हैं। और अरुण कुमार शर्मा, रीण देवी शर्मा और राहुल कुमार शर्मा आप हैं सलाही सुकनाहा नेपाल से। सतरंग लिसनर कुंभाइये परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अंकित दले। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और आराध्या सुलरकर। तेलंगाना निजामाबाद से शकला बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीमुन्ना और इसी नगमे को सुनना चाहा था सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग ने भी। अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और समर फुलमाली। उत्तमनगर दिल्ली से बोधराज खोलवाल और भानु प्रकाश, साथ में कमला रानी। एडवोकेट नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद आप हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। आइए दोस्तों सुनते हैं पाकिज़ा फिल्म का ये नगमा। कैद भोपाली ने इस नगमे को कलमबंद किया और मौसीकी से सजाया गुलाम मोहम्मद ने। आवाज लता मंगेशकर की, पसंद आप दोस्तों की। मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। और ये हैं मलकापुर जिला बुल्ढाना से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और कंचन खर्चे। भाटापारा से बच कमल, डॉक्टर हुसैन बिरगू और मोतीलाल यादव का ईमेल हमें मिला। आप सुनना चाहते हैं इस नगमे को। ऑक्सीजन पार्क रावनगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चनता गुंडाने और पन्ने प्रसिद्धि शबनम और अकरम और साथ में क्या है तबीज टिकली मध्य प्रदेश से। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और बिहारी बाबू का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा भी सुनना चाहते हैं इस नगमे को। और आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहु रूबीना वसीम, नाज मंजिल महसौल, सीतामढ़ी बिहार से। सावर रोड गंजुंडवाड़ा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही और इस नगमे को सुनना चाहे। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरेन अंसारी ने भी। और गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कौर और तुषार सिंह। और कंगा बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी। सैयद मस्तूर, शान हसन और नाजिया इब्राहिम आपका भी ईमेल हमें मिला कुमार हेड़ा से। और कदबई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, समिया जुबैर और अंजुमन खान। अकाली दीवान वाले ये मेल डबल आए हैं दोस्त। और गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा आप दोस्तों की, पसंद आपकी नजर।

तारीखी अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर माउन पुई सवाई ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने यह कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तक किए गए भारत न्यूजीलैंड आजाद तजारती माहदे को भी उजागर किया कि यह तजारत और कॉमर्स, समुद्री सिक्योरिटी, अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन में मजीद तोसी फराहम करेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा किया जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लू प्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संगम तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और तहफुजाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत मुल्क की साहली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेनिंग हासिल की हो। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समुद्री उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर, नीस, मशीनी जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। ओमान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और ओमान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके अवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने अबनाए हुर्मुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गर्ज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने ओमान में भारतीय नजाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ओमान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोश व खरोश काबिल तारीफ है। तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत कौंसिल एनपीसी सनत और अंदरूनी तजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाती ताउन को बेहतर बनाने, इदारा जाती सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमत की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीकेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने इन इकदाम को ही जायजा लिया जिसका मकसद ज्यादा मजबूत, मुआसिर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मम्लिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में आइंदा मानसून इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पार्लियामान का यह इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और अगस्त की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मेघवाल ने कहा कि आने वाले इजलास के लिए कानून साजी के उमूर के प्रोग्राम का जामे जायजा लिया गया और जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निजामों में से एक बनकर उभरा है जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं।
भारतीय साहिली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेस ने शिरकत की ताकि मुस्तकबिल के साहिली गार्ड प्लेटफॉर्म्स पर गौर व खोज किया जा सके। भारत के जरिए मुबादला के जखायर

अरे दोस्तों, और सुनते हैं चिराग फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई है मदन मोहन ने और पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को। राजधानी रायपुर से नीलू मेघनी नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, आप बरसात का नगमा सुनना चाहते थे तो ये नगमा समझिए आप ही के लिए था। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, इमरान खान और इरफान खान। मधुबनी बिहार से एक झाजी, दुर्गा प्रसाद सैनी और कल्पना मदन झा, माना मैं आपका पता है 27 निर्मला अपार्टमेंट विटाड़ वापी। गुजरात से कंवर कॉलोनी बढ़ाड़वा, जिला खरगांव मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कलस्कर, राजेश और सोनी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। कोटेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती। सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सेन। महल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरा जहानाज, तला जहानाज और फरोज जहानाज। और बंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश रामभरे, जहानवीर रामभरे और वैष्णवी हर्ष रामभरे। श्रीमती सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और पूजा पिंकी चौरसिया, आपका भी ईमेल हमें मिला। आप हैं सतबाड़ा उत्तर प्रदेश से। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ और स्विस आशीष गौड़। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। चांदपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा शबनम और रेसा खातून। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव। मंडीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पपी किरण, सुरेश खुराना, किरण खुराना और लब्बे। दुबानगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। अमीर खुसरू रोड गंजुनवाड़ा से इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम और डॉक्टर दबीर हसन, साथ में बेगम शबनम अनवार। नालापारा बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन और मोहम्मद जमालुद्दीन। और इसी नगमे के लिए हम तक ईमेल आया वर्णशाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वी चौहान और अंकित चौहान की जानिब से। सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का यह नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है चिराग़।

0: سامعین ابھی آپ سن لیتے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے اب پروگرام سرخیوں میں کا، تو لیجیے سنیے پروگرام سرخیوں میں۔
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार टीना झा।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों बाद न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ऑकलैंड का प्रतिष्ठित स्काई टावर भी भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता के रंगों में जगमगा था। वहीं भारतीय समुदाय में भी इस यात्रा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इस यात्रा का रणनीतिक महत्व क्या है, भारत की इंडो पैसिफिक नीति में न्यूजीलैंड की क्या भूमिका है और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को किस नई

0: दिशा में ले जा सकती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व राजदूत श्री गुरजीत सिंह जी। अम्बेसडर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। अम्बेसडर, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा है। जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, स्काई टावर को जिस तरह से रोशन किया गया है, या फिर जिस तरह से भारतीय समुदाय का उत्साह देखने को मिल रहा है, इन सब के अपने प्रतीकात्मक मायने हैं। लेकिन आपकी नजर में क्या ये यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है?
1: निश्चित है कि ये एक नया दौर शुरू हो रहा है। चाहे ये भारत के प्रधानमंत्री की 40 साल के बाद एक यात्रा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर लुक्सॉन के साथ भी उनकी पहली मुलाकात ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइंस पे लाओस में हुई थी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि न्यूजीलैंड के साथ अपना संबंध बनाएं, चाहे कि एक बहुत बड़ी विजिट ऐसी नहीं हो। तो उनके प्रधानमंत्री भी पिछले साल आए थे, उनके विदेश मंत्री भी आए थे, और उन दोनों का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हालांकि वो दोनों एक ही सरकार में हैं, उनकी पार्टियां अलग हैं, और हमारे साथ जो एफटीए हो रहा है उनके ऊपर उनका नजरिया अलग है। तो हमने न्यूजीलैंड के हर कोने की जो एक सोच है उसके साथ संबंध बनाए हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूजीलैंड गए हैं तो वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, वो ना तो क्वाड का मेंबर है और ना ही इंडो पैसिफिक में इतना एक्टिव है, लेकिन अब वो भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देख रहा है और भारत उसका पूरे रूप से सम्मान से उसका जवाब दे रहा है।
0: बिल्कुल, तो इस बारे में क्या आउटकम रहेगा, दोनों प्रधानमंत्री जब वार्ता करेंगे, इस पे हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अम्बेसडर, आज जब इंडो पैसिफिक वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका है, ऐसे में क्या भारत और न्यूजीलैंड रीजनल सिक्योरिटी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करने में साथ मिलकर किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं?
1: और न्यूजीलैंड ईस्ट एशिया समिट के दोनों सदस्य और दोनों ही आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं, और हम और दोनों ही आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में भाग लेते हैं, आसियान रीजनल फोरम में भाग लेते हैं। तो जो ये अब रणनीति की बात कर रही हैं, ये इन संस्थाओं में जो बातचीत होती है उसमें भारत और न्यूजीलैंड का साझा प्यार वहां पर आ चुका है, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है उस क्षेत्र में, खासकर पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी अपना हाथ उठाकर एक कोशिश कर रहा है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जाए और वहां पर किसी बड़ी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह से नहीं फैलने दे।
0: अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। अम्बेसडर, आपने जिक्र किया कि एफटीए का जो फॉर्मल साइनिंग है वो हुआ था अभी कुछ महीनों पहले। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि भारत न्यूजीलैंड संबंधों में व्यापार अपनी पूरी क्षमता फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। एफटीए के बाद वो कौन से क्षेत्र हैं दोनों देशों के लिए जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं निकलकर सामने आई हैं, किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है एफटीए के बाद?
1: न्यूजीलैंड अपनी ट्रेड पॉलिसी के लिए बहुत ही माहिर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता है, इसलिए वो एपेक का मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी। वो आसेप जिसमें से भारत ने एग्जिट कर लिया था उसका भी मेंबर है, और कॉम्प्रीहेंसिव पार्टनरशिप फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उसका भी वो मेंबर है, उसका इनफैक्ट सेक्रेटेरिएट वही चलाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो अग्रीमेंट्स हैं जिनमें भारत नहीं है उसमें सब में न्यूजीलैंड है, क्योंकि उस न्यूजीलैंड को अपने व्यापार के लिए बड़ी मार्केट्स की एक सर्च रहती है, हमेशा खोज रहती है। तो भारत के पास भी वो इसी वजह से आया कि हमें भी भारत का जो बड़ा मार्केट है उसकी खोज है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब आरसीईपी की निगोसिएशन होती थी तो न्यूजीलैंड बहुत भारत को तंग करता था, क्योंकि उसकी एकमात्र रणनीति थी कि हमारे दूध और दूध के पदार्थ भारत की मार्केट में जरूर आए
0: जी।
1: अब हमारा जो एफटीए उनके साथ हुआ है, इसमें भारत ने अपनी जो अपनी हमारी सोच है उसकी रक्षा की है, और इसमें दूध, एग्रीकल्चर, ऐसी जो चीजें हैं उनको हमने नहीं आने दिया है। लेकिन क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी हाई है, न्यूजीलैंड ने एफटीए साइन किया है और भारत के 100% गुड्स को वहां आने की अनुमति दे दी है। हमने अपनी तरफ से भी काफी ढील उनको दी।

0: है और तकरीबन 90% जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट ऑलरेडी भारत को होता था उसको फायदा होगा एफटीए से। लेकिन जो ये बड़ी चीजें होती हैं दूध मिल्क पाउडर चीज, इन चीजों को हमने अभी अपनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजों में समझौते की तरह हम आगे बढ़े, जैसे कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम जिसमें एप्पल कीवीज और जो उनकी एक खास शहद होता हनी होती है मारुता, उसके लिए भारत में कैसे उनको उसका उत्पाद किया जाए उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि भारत की ओर से जो लोगों की मोबिलिटी है, मतलब वहां जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं, इसको एफटीए के अंडर हमें और अनुमति मिलेगी। और फाइनली $20 बिलियन का एफडीआई निवेश न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में करेगा। तो ये होता है एक कॉम्पोजिट एफटीए जिसमें निवेश भी है, व्यापार भी है, मोबिलिटी भी है और सर्विसेज भी है। और न्यूजीलैंड का जो निवेश भारत में है वो ज्यादातर आईटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, ऐसी सर्विसेज में है। तो ये उनकी क्षमताएं हैं, तो ये किस तरह से उनको फायदा होगा।
1: नई संभावनाएं हालांकि तलाश रहा है न्यूजीलैंड भी, क्योंकि जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं भी न्यूजीलैंड को नजर आ रही हैं। और जो क्लाइम डाउन एक तरह से कह सकते हैं उनकी पुरानी पॉलिसी में, वो भी हमने देखा है। आपने पीपल कनेक्ट की बात कही अम्बेसडर, तो उससे जुड़ता एक सवाल है कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में वो ये इंश्योर करते हैं कि भारतीय समुदाय से वो संवाद जरूर करें, और न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं हम कि भारतीय समुदाय लगातार प्रभावशाली होता जा रहा है। क्या ये समुदाय हम कह सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक नेचुरल ब्रिज या फिर एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर नो लॉन्गर जस्ट अ कल्चरल और एन इमोशनल ब्रिज, दे आर एज मच एन इकोनॉमिक एंड अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज। क्या न्यूजीलैंड के केस में ये कहा जा सकता है कि भारतीय समुदाय के लोग जो वहां रह रहे हैं वो भी इस रिश्ते को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं?
0: क्योंकि वहां पर तकरीबन 3 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जिसमें से तकरीबन 70,000 भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं। तो ज्यादातर लोग तो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ साल पहले से एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था कि भारत जैसे देशों से जो यंग प्रोफेशनल होते हैं, जिन एरिया में उनको जरूरत थी, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, हेल्थ वर्कर हुआ, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हुआ, ये उन्होंने इन प्रोफेशनल को टारगेट करके माइग्रेशन की। तो ज्यादातर माइग्रेंट्स जो उधर हैं हमारे, वो सब प्रोफेशनल हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा पौधा और अच्छी तस्वीर बना के देता है। और वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इंतजार कर, आज मैंने देखा था कि कई लोग भारतीय मूल के कह रहे थे हमारा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि छोटे से देश में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। अभी आज पहुंच गए हैं, तो जो ये मीटिंग होगी उसमें हाउस फुल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के लिए आज तक नहीं हुई है। तो ये एक नया कीर्तिमान आज देखा जाए।
1: बिल्कुल, उस तरह की एक्साइटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी देखी गई है। बल्कि कल जब मेलबर्न में भी प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो काफी उत्साह था। अम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट रहा प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड से पहले 2 दिवसीय यात्रा, उसमें भी कई इम्पोर्टेंट आउटकम्स, कई ठोस परिणाम सामने आए। अगर दोनों यात्राओं को भारत की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलीनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, एक डिप्लोमेटिक संदर्भ में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सके।
0: नॉर्मली न्यूजीलैंड को एक ऑस्ट्रेलिया का करीबी दोस्त माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया नीति अपनाएगा न्यूजीलैंड भी वो अपनाएगा। लेकिन इंडो पैसिफिक पे, क्वाड पे और चीन के ऊपर न्यूजीलैंड ने अलग कदम उठाए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक में एक्टिव है, न्यूजीलैंड ने उसने इतने कदम नहीं बढ़ाए। इसलिए दोनों विजिट्स को एकमात्र रूप से देखना, मैं समझता हूं थोड़ी विचित्रता आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे गहरी बात दो है, एक यूरेनियम और एक क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीजें बड़ी मात्रा में है। तो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो यूरेनियम हमको मिलेगा जिससे हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चला पाएंगे और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स, तो वो कौन क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और पैक्स सिलिका का भाग है ऑस्ट्रेलिया। फिर डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो हमारा एक संधि हुई है उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया का मैरिटाइम बॉर्डर कमांड, ये भी दोनों आपस में अब तालमेल रखेंगे। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो अब तेजी से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमारे एक इंटरिम एग्रीमेंट है, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम हुआ और इसमें कई लोग मौजूद थे, और आपने देखा होगा कि एशिया में ऐसा सीईओ फोरम नहीं हुआ। तो हर देश में वही चीज नहीं होती है, डिपेंड करता है उस देश में क्या क्षमता है। और जो कल्चरल रिपैट्रिएशन है, अभी ऑस्ट्रेलिया के पास कई भारत के सांस्कृतिक चीजें हैं जो चोरी से वहां आई हुई है, तो उन्होंने कई चीजें इस बारी भारत को लौटाई और इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड के पास यूरेनियम नहीं है, क्रिटिकल मिनरल नहीं है, उनके पास शीप है, दूध है, आईटी की क्षमता है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा वादा कर दें एफडीआई का, उसका पूरा करें, तो उससे तो फायदा होगा ही। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो आसियान और ईएएस में भी बात होती है, न्यूजीलैंड उसको भी दोहरा रहा है। ये विजिट, जैसे मैंने कहा, एक नया दौर शुरू करेगी भारत और न्यूजीलैंड में।
1: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा बिल्कुल यही स्पष्ट कर रही है। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इंडोनेशिया से की, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो न्यूजीलैंड गए हैं दो दिनों के लिए। ये स्पष्ट है कि भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण अब और अधिक व्यापक हो गया है और अधिक सक्रिय है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देशों के साथ सहयोग को नई दिशा देने की ये पहल आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और साझा समृद्धि को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। इसी देश के साथ प्रधानमंत्री इन तीनों देशों की यात्रा पर गए हैं। अम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशरात मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। वक्त हो चुका है कव्वालियों का, तो लीजिए सुनिए चांद अफजाल कव्वाल और साथियों से ये कव्वाली।

अब आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हुआ चाहते हैं। अब खबर नष्ट की जाएंगी।

0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیوٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اسپین کے جنوب میں پیش آئے جنگل کی آگ کے واقعے میں جمعہ کی صبح تک 12 افراد ہلاک ہو گئے. اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، شب کا ایک بجا چاہتا ہے. اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشرات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया. प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है. यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है. न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है.
3: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी.
4: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है. न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है. साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं. यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे.
3: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा. उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की. मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे. इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था. कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के निपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद यह जत्था आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भी सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे मैं आपकी दोस्त कीर्ति लेकर हाजिर हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, जी हां, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म द ट्रेन के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, संगीत आर डी बर्मन का है और बोल आनंद बख्शी के हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस गीत को भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक बार कवर और रीमिक्स किया गया है। ये इतना सुपरहिट गीत है, तो चलिए मिलकर आनंद लेते हैं।

एक सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गानों में से एक है। ये गीत 1973 की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात का हिस्सा है और इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। आर डी बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया था और आवाज आशा भोसले तथा मोहम्मद रफी ने दी थी। पर दोस्तों आपको बता दें कि इस गाने में गिटार की जो मशहूर धुन इस्तेमाल की गई थी उसे आर डी बर्मन ने एक कैनेडियन गीत हुश हुश स्वीट शार्लेट से प्रेरित होकर बनाया था।

अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं जो कि भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है और भारतीय सिनेमा की सबसे सदाबहार भाई बहन के गानों में से एक है। जी हाँ, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो कि 1971 में आई थी, इसी फिल्म से आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं। और ये गीत फिल्म में दो बार गाया गया था। पहला वर्जन लता मंगेशकर जी ने गाया था जिसे फिल्म में जीनत अमान पर फिल्माया गया और दूसरा वर्जन किशोर कुमार ने जो देवानंद पर फिल्माया गया था। तो आपको सुनवाने जा रहे हैं हम किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

ये बहन भाई का गीत इतना सुपरहिट हुआ कि इस पंक्ति पर मुहावरा भी बन गया कि अगर बहन भाई की बात आती है तो सिर्फ यही लाइन आती है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। खैर, अब अगला गीत जो आपके लिए आ रहा है वो जिंदगी पर है। जी हां, जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिल्म अंदाज से हिंदी सिनेमा का सदाबहार गीत है और इसे किशोर कुमार ने गाया है। बोल हजरत जयपुरी ने लिखे थे और ये गीत राजेश खन्ना हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के बाद अगला गीत जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं वो है मुकेश की आवाज में फिल्म आनंद का। जी हाँ, और ये जो गीत है इसमें संगीत सलिल चौधरी ने दिया था और योगेश गीतकार जो है उन्होंने इस गीत को लिखा था। और दोस्तों आपको बता दें इस गीत के पीछे की एक छोटी सी बात, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जानबूझकर लेखक गुलजार को निर्देश दिया था कि वे फिल्म की शुरुआत इस गाने से करें ताकि दर्शकों को तुरंत पता चल जाए कि मुख्य किरदार आनंद की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। और यही तो एक कला है जो दर्शकों को इस पर्दे पर आई फिल्मों से, गीतों से बांधती है। तो चलिए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: क्या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म सिलसिला से, जो कि 1981 में आई थी और बेहद लोकप्रिय गीत है देखा एक ख्वाब। दोस्तों इसकी शूटिंग एम्स्टरडम के मशहूर कुकनहॉफ, ट्यूलिप गार्डन और कश्मीर के पहलगाम में हुई थी। ये गाना डॉक्टर करण सिंह की एक डोगरी एल्बम से प्रेरित है और आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग का लोकेशन खुद अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया था क्योंकि वे पहले भी वहां जा चुके थे। आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत। संगीत शिवहरि का था और बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे।

ऐसे सदाबहार गीत सुनकर कई बार लगता है कि काश वक्त यहीं रुक जाए और इन गीतों के बाद जो समय आने वाला है वो ना आए और यही गीत हम हमेशा सुनते रहें। अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म मेरे नसीब से, और ये गाना 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब का है। जी हाँ, मनमोहन देसाई जो कि इस फिल्म के निर्देशक थे। इस गाने की धुन भले ही भारतीय संगीत पर आधारित थी लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिदम और क्लब सिंथ बीट्स का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि 1980 के दशक की शुरुआत में पारंपरिक संगीत और मॉडर्न डिस्को पॉप को जोड़ने वाला ये एक अनोखा गाना बन गया था। और दोस्तों, गाने के अंत में एक आवाज सुनाई देती है जो बैकग्राउंड डांसर्स का जोश बढ़ाने के लिए, दैट इज एवरीबॉडी कम ऑन, चिल्लाती है। ये आवाज किसी सिंगर की नहीं बल्कि खुद निर्देशक मनमोहन देसाई की थी, जिन्होंने गाने में एक कमर्शियल और वेस्टर्न एनर्जी जोड़ने के लिए ऐसा किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब समय है इस कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म शराबी से। और ये सदाबहार गानों में से एक है, 1984 में ये फिल्म आई थी। आइए सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने के दीजिए अपनी दोस्त की इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए।

0: Nova is now tuning in non-stop film music. फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों के प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। यह फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमरीका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी

0: Second quarter-final match between Spain and Belgium is underway at Los Angeles Stadium in Inglewood, US. Both the teams are tied 1-1 when reports last came in. Spain took the lead as midfielder Fabian Ruiz scored in the 30th minute of the game. And that is the end of this news bulletin.
1: हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। मध्यरात्रि के 2:10 गीत बहार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त कीर्ति और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो बिल्कुल हमेशा की तरह आपके लिए गीतों की लिस्ट फहरिस्त तैयार है और बहुत ही बेहतरीन गाने चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और बने रहिए 3 बजे तक इस कार्यक्रम में।

0: इसी के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यही समाप्त होता है। अपने दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइबई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के रियाजी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसम्बर से नागपुर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा कि जनवरी 2025 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अमरीका और अन्य प्रमुख दानदाताओं द्वारा सहायता में कटौती के कारण संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी है और दुनिया भर में कार्यक्रमों को सीमित करना पड़ा है। अमरीका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के विदेश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के इंगलवुड स्थित लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल गीत कार्यक्रम। प्रातः के 4 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। माफ कीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

0: गुरुजना के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में प्रस्तुति मिनी एन की।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक्षम वत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। सुबह के 4:54 और 20 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय 5:20 है, आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम। 5:30 पर देशभक्ति गीत हिंदी फिल्मों से आप सुनेंगे।

0: हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के उपरांत 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप राहुल संस्कृतायन के जीवन के प्रसंग सुनेंगे। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ प्रसारित होगा, जिसमें आप बालकांड का भाग 113 सुनेंगे। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सात बजकर 30 मिनट का समय संगीति का कार्यक्रम का रहेगा। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की यह संक्षिप्त जानकारी थी। हम आपको बता दें 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। हिंदी समाचारों के उपरांत 5:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सिखी केसा स्वासा नाल निवाही इना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बलो जी वाहे गुरु बलो जी। पंजा तख्ता सर्वत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बलो जी वाहे गुरु बलो जी। में सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वा

0: दया कृपा संतोष सुजग गंडी सतवट एक नेव जी का है तप देखत ना हो टूटे ना मर लगे ना हो जले ना जाए तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौंकर मूला आपे चौंके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थी जा ओ मुआ चढ़ पया नितगा गया भला पेला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां बहनामियां रात दिन सजी नाल तग कबा कत्ती है बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए कोई प्राणा सटी है पर पाई है होर नानक तग ना टुटई जे तग हो वै जो
0: माला पहला नाय मनिए पथ उपजे साला ही सरसूत घर गए अंदर पाइये तग न टूट सपूत महला पेला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवेंड दारी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा

साहिब हो दयाल कृपा करे ता साहिकार कराए सी सो सेवक सेवा करे इसनो हुक्म बनाए सी हुक्म न होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदा।

0: पहला गऊ ब्राह्मण को गुरावो गोबर तलना जाई चौकी टिका से जो मोदी ताल मिले शाखाई अंतर पूजा परक ते बासन जम दुर्गा पाई छोटी लप खंडा नाम लिया जाय तरंदा महला पेला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी बगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ावे पार कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया प्रभू
0: मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जब कुसाई नीर वस्त्र पैर होवे प्रवान मले स्थान दे पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंकी ऊपर किसे ना जाना देख के चौंका गद्दी का रूपराय बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन साडा पिटे तन फिटे फेड़ करे मन जूठे चुरी परे
1: ओ नानक सच ते आई है।